है जिसने किया है मुझको खुद से बेखबर? वो कौन है जो मेरे पल पल में शामिल है? वो कौन है जो मेरी मंजिल है? वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ?

जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है।

कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

दोस्तों, ये ख्याल तो जरूर आया होगा ना कि यार जिंदगी में ना रिटायरमेंट जल्दी ले लेनी चाहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी सिंपली आफरीन ऑन मीठी मिर्ची ऑन 89.6 मिर्ची वन। और ऐसा कई बार होता है ना कि आप काम के मारे इतने थक जाते हो और सोचते हो कि यार इतना पैसा कमा ले कि हम जल्दी से रिटायर हो जाए और उसके बाद में आराम फरमाएंगे। लेकिन कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद क्या? देखिए, मेरा मानना कुछ ऐसा है कि जीने की वजह, हेल्दी रहने की वजह बिजी रहने से आती है। जब हम दिन के एंड में शुक्र करते हैं आज के दिन की, तब हमेशा इस ख्याल के साथ में हमें सोचना चाहिए कि कल क्या। कल के जीने की वजह सोच कर ना हमें आज के दिन का अंत करना चाहिए। इस तरीके से आपका दिमाग भी हेल्दी रहता है और आपकी बॉडी भी। और वैसे कहना तो यही है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए मेरे ख्याल में बी बिजी, बी हेल्दी और अपनी जिंदगी को हर दिन एक नए वजह के साथ शुरुआत कीजिएगा। फिलहाल शो की शुरुआत करते हैं राइट हियर विद मी, दैट इज सिंपली आफरीन विद अ सिंपल सा ख्याल ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोलिए
2: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है, चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
1: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
2: अच्छा, वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है? थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना।
1: मैंने बीए किया है।
2: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाहता रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको।
1: पर क्यों?
2: नहीं, मैं ऐसी पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
1: लेकिन क्यों? हील नहीं, तो आपको पूछना क्या है?
2: नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती? मैं
1: हील तो कभी पहनते भी हैं, कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
2: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं।
1: हाँ, ज्यादातर नहीं।
2: हाँ, ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है, तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए। तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
1: क्या बात कर रहे हैं आप?
2: नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे, अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना, लड़के की बड़ी ख्वाहिश है। बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे, सबने ऐसी कर लिया, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम वो लड़का भगा के करना चाहते हैं।
1: कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए
2: दोबारा। एक कमाल है, अभी से भाग गई यार।
1: हेलो,
2: देखा आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या?
1: नहीं,
2: दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा, लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के
1: नहीं बकवास।
2: अच्छा, फोन मत काटिए, फोन मत करिए, मेरी बात सुनिए। रेखा
3: रेखा, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
1: मेरी शादी के बाद डैडी से ही करिएगा।
3: नहीं, मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से तो नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
1: नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी।
3: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: फिलहाल तो कतर में हर दिन जैसे बढ़ते जा रहा है, थोड़ी सी मुश्किल तो होते जा रही है। और वजह ये, वही जो आपके सर पर बैठ के हर रोज सुबह में तांडव करता है। वेल वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड वेदर के हाल चाल जरा देखा जाए, आज क्या कह रहा है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। वेदर ये कह रहा है 39 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम, 28 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम, और एक्चुअल फील्स जो है फिलहाल आपको 31 डिग्री सेल्सियस लग रही है, लेकिन फील तो मुझे कुछ ज्यादा ही हो रहा था। हालांकि ह्यूमिडिटी थैंक्स टू दैट अभी भी कम है, इट्स लाइक 29%, काफी कम है। हवाएं तेजी से चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर पर। ऑल इन ऑल जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेदर होगा, बस उसी तरह से हो रहा है। बट वन थिंग टू बी नोटेड हियर इज दैट शाम के वक्त ना बड़ा मजा आ रहा है। मतलब कल तो इतनी अच्छी अच्छी हवाएं चल रही थी जोरों की, और आफरीन कहाँ होगी, जस्ट गेस, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। मतलब मैं तो मीनापुर चली गई थी यार, क्या जबरदस्त लगता है जब ठंडी ठंडी हवाएं, मीनापुर का सनसेट और ये सारी बातें मैं आपको सुबह सुबह काम पर जाते वक्त बता रही हूँ, कैसे ध्यान लगेगा काम पर, आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100 0813.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Very good morning and welcome back. Aap sun rahe ho Assembly Afreen ko right here on Mirchi Mornings. हाँ जी, इट इज अ ब्यूटिफुल मंडे मॉर्निंग. और अब आप कहोगे कि आफरीन, रियली मंडे मॉर्निंग क्या खूबसूरत होती है. होती है भाई, इट्स ऑल इन द माइंड. वैसे थोड़ी देर पहले हमने वेदर की बात की है यहाँ पर, और वेदर तो हमारा साथ तो दे नहीं रहा है, लेकिन कतर की जो एक्टिविटीज़ जो चल रही है वो खूब साथ दे रही है हमें एंटरटेन रखते हुए. जिस तरह से सर्कस, फोंटाना सर्कस जो है, उसके रिव्यूज़ तो बहुत ही खूबसूरत आए हैं. आई हैव सीन सम वीडियोज़. हालांकि मैं गई नहीं हूँ, लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस अ सिमिलर काइंड ऑफ सर्कस समवेयर एल्स. लेकिन ये कुछ है, वन ऑफ अ काइंड सर्कस है, विच इज़ लाइक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम नॉट ओनली इन कतर बट इन द एंटायर मिडल ईस्ट. मतलब वाटर थीम्ड सर्कस. आई डोंट थिंक सो यू वोंट बी एबल टू इमेजिन ऑल्सो कि यार वाटर थीम्ड सर्कस हो क्या सकता है. उसके लिए तो आपको हयात प्लाजा के टेंट में जाना पड़ेगा. सर्क दू सुलेल, सर्क दू सुलेल नाम है इसका, इट्स सर्क दू लबाना नाम है इसका, राइट? बिकॉज आई हैव वॉच सर्क दू सुलेल. सो यस, फोंटाना सर्कस एट हयात प्लाजा हैपनिंग ओनली अंटिल दिस मंथ एंड. और जब भी जाओगे तो भाई देखो, टिकट विकेट एडवांस में बुक करके जाओ. ये वहीं ऐसे उठ के नहीं जा सकते, ऐसे जाकर विंडो पर जाकर टिकट ले लिया हमारे जमाने में जैसे होता था. नो नो नो नो नो, पहले से ही सारी प्लानिंग करके जाइए एंड डोंट मिस इट आउट ऑन दिस यार. एंड आई एम श्योर किड्स आर लिसनिंग टू मी गोइंग टू स्कूल, एंड इफ एनी ऑफ द किड्स आर लिसनिंग, हेलो शेलो कहो, चलो जल्दी से आज आफरीन को. 5000 1896 इज माई नंबर एंड आई वॉन्ट टू लिसन टू द किडो out there. फटाफट से मैसेज करो. तब तक के लिए अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है. 1 मिर्ची के साथ.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: अजय देवगन, फर्ज करते हैं आप माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर इज केआरके, देयर इज करण जौहर एंड देयर इज काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
2: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
1: बिकॉज दैट्स द गेम. हमको दोनों को तो बचाने ही पड़े.
2: मुझे बचाने नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
1: ऐसा ही हूँ मैं.
2: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
1: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट. बॉलीवुड बोल डाल,
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: यार बजट ही नहीं बन रहा है. प्राइसेस देखे, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है.
4: मैंने बोला था ना, मई 12th का वेट कर.
3: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
4: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है. 12th टू 19th में, इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन.
3: किलर ऑफर्स, मैं अभी बैग पैक करता हूँ.
4: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट. मुमताजा, डोंट मिस आउट.
5: खटखट,
6: कौन है?
5: दवे.
6: दवे कौन?
5: द वे यू लव मी. आई हाय मर जावा.
6: खटखट, हु दैट?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर, सर मुझे बात करनी है आपसे। ऑफिस में काम मैं करता हूँ और क्रेडिट मेरा टीम लीडर ले जाता है, मैं क्या करूँ?
0: तो आपका प्रॉब्लम है कि क्रेडिट आपका टीम लीडर ले जाता है। एक काम करो, बैंक जाओ, क्रेडिट उधर भी मिलता है।

0: वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 7:03.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

Well, आप तो जानते ही हो कतर में कोई भी इवेंट हो या कुछ हो स्मॉल स्केल पे थोड़ी ना होता है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और बस ऐसे ही लाजदन लाइफ एनर्जी के साथ शुरू हो गया है जीसीसी गेम्स 2026, जहां 193 एथलीट्स कतर को रिप्रेजेंट करेंगे, 49 फीमेल एथलीट्स, 144 मेल एथलीट्स अक्रॉस 17 डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड 14 फेडरेशन। मतलब पूरा एक स्पोर्टिंग का इको सिस्टम एक ही एनर्जी पे चलने वाला है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। वेल, यहाँ पर सबसे क्यूट पार्ट ये लगा अबाउट दिस एंटायर गेम, द मैस्कट वशिक नाम है इसका, डेजर्ट लिंक से ये इंस्पायर्ड है, बट ऑनेस्टली इट्स मोर देन जस्ट अ क्यूट मैस्कॉट, इट रिप्रेजेंट्स रेजिलियंस, एजिलिटी और गल्फ स्पिरिट। वैसे इसे स्मार्ट ब्रांडिंग ही कहेंगे हम, क्योंकि ग्लोबली सक्सेसफुल स्पोर्टिंग इवेंट्स सिर्फ मैचेस से याद नहीं रहते, उनकी एक आइडेंटिटी से भी होते हैं। जैसे ओलंपिक्स का एक मैस्कॉट है, फीफा का एक मैस्कॉट था, और अब दोहा अपनी स्टोरी टेलिंग को और भी स्ट्रांग बना रहा है। वेल, यहां पर एक और चीज है जहां गेम्स आर नॉट जस्ट अबाउट मेडल्स, यहां एक्चुअली कतर का सॉफ्ट पावर शो कॉज हो रहा है। एस्पायर डोम, लोसेल शूटिंग रेंज, हमद एक्वेटिक सेंटर, वुमेन स्पोर्ट्स हॉल, ये सारे वेन्यूज एक तरह से कह सकते हैं एक प्रूफ है कि कतर कंटिन्यूसली अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बना रहा है। और इंक्लूसिविटी अगर देखा जाए तो 49 फीमेल एथलीट्स रिप्रेजेंट कर रही हैं कतर को, दैट इज एब्सोल्युटली पावरफुल इन गर्ल स्पोर्ट्स कल्चर एज वेल। अब शेड्यूल काफी पैक्ड है, यहाँ पर बहुत सारे किस्म के स्पोर्टिंग एक्टिविटीज है, जैसे गेम्स है, स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, पैडल, फेंसिंग, स्नूकर, बोलिंग एंड सो मैनी मोर। सो हमेशा की तरह जब स्पोर्ट्स की बात आती है ना, तो कतर इज एब्सोल्युटली रिलायबल आई वुड से टू एग्जीक्यूट एनी स्पोर्टिंग एक्टिविटी, एनी स्पोर्टिंग ग्रैंड इवेंट एफर्टलेसली। और बस यही इसका एक और एग्जाम्पल है। मैं हूँ आफरीन आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, माइक से दिल तक, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La virva la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Sir, very good evening, me. बैंक से बोल रही हूँ, हमारी एक स्कीम आई है, क्या आप लेना चाहेंगे?
2: लेकिन मुझे नहीं चाहिए।
3: ओके सर, बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का
4: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ, अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन।
5: अ वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
2: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी।
5: यस सर।
2: जरा उनसे बात कराइए मेरी।
5: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है। मैं आपकी
2: बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
5: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने इनको यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं।
2: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
5: राइट सर?
2: जब मैंने उसको मना किया है तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर।
5: सर
2: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
5: आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
2: मैं
5: बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को। बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का आजा फोन।
3: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
2: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था।
3: यस सर।
2: गालियाँ दे जा रहा है यार वो।
3: सर कौन?
2: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाई जा रहा है।
3: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी
2: यार,
3: भी
2: क्या
3: मैं
2: नहीं होता यार।
3: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर, आपके कहने से हम तो ये
2: फोन आ रहे हैं बराबर, मेरे को गालियां दे रहे हो।
3: सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है।
2: झूठ बोलेंगे तुम लोग,
3: ऐसी गलतियां आइंदा नहीं होगी। सर बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मुर्गा कहीं का।
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरी हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: ओह यार तुम लोग ना।
5: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ सर हंस के बोल दीजिए।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
8: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
10: कम है के?
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखो कतर की जो ये गर्मी है हमेशा हमें परेशान नहीं करती है, इनफैक्ट कभी कभी एक्साइट भी कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है ऐसे आफरीन, हो सकता है ना। जैसे जैसे गर्मी के दिन आगे आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब ये है कि भाई बच्चों की स्कूल की वेकेशंस शुरू होने वाली है, यानी जुलाई अगस्त की जो पूरी दो महीने की अच्छी वाली वेकेशन होती है, जहां आधा कतर यहां से भाग जाता है, अपने अपने होम टाउन जाता है वेकेशंस के लिए जाता है। और ऐसे में जब फ्लाइट ऑपरेशंस जो हमारे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में और ज़्यादा कंटिन्यू एक्सपांड होते जा रही है, जैसे कल और भी ज़्यादा अपडेट हुई है फ्लाइट्स, अगर मेरी लिस्ट में यहां पर बात करें तो फ्यू मोर हैव फ्लाइट्स हैव बीन एडेड हियर, जैसे रॉयल एयर मोरक्को ये ऐड हुई है, मलेशियन एयरलाइंस ऐड हो चुकी है, ये भी स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में, जुलाई में स्टार्ट होने वाली है। तो इफ यू हैव प्लान्स टू गो टू मलेशिया समवेयर इन जुलाई, यू कैन प्लान दैट एज वेल। 19 में से फ्लाई नास भी शुरू होने वाली है। सो ऐसे करते करते अब काफी सारी एयरलाइंस जो है वो जुड़ चुकी है, इनफैक्ट कुवैत एयरवेज शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, इनफैक्ट एयर इंडिया की अगर बात करें तो वो भी है, इंडिगो करें तो फ्यू मोर हैव फ्लाइट्स हैव बीन एडेड हियर, जैसे रॉयल एयर मोरक्को ये ऐड हुई है, मलेशियन एयरलाइंस ऐड हो चुकी है, ये भी स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में, जुलाई में स्टार्ट होने वाली है। तो इफ यू हैव प्लान्स टू गो टू मलेशिया समवेयर इन जुलाई, यू कैन प्लान दैट एज वेल। 19 में से फ्लाई नास भी शुरू होने वाली है। सो ऐसे करते करते अब काफी सारी एयरलाइंस जो है वो जुड़ चुकी है, इनफैक्ट

छुट्टियां जो पास में आ रही है, ऐसा तो नहीं ना सीधा उठ के अब आप प्लान करोगे. अब क्योंकि फ्लाइट्स खुल गई है, शायद हम हमारे एटलीस्ट होम टाउन जाने का तो प्लान कर ही सकते हैं, है ना. कहाँ जा रहे हो फिर बताओ मुझे. 5000 1896 मेरा व्हाट्सएप नंबर है. लेट्स कनेक्ट हियर. और तब तक के लिए अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है. I'm not sure it's hot.

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट एफएक्स रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: दोस्ती का गुस्सा ले मैडम. नो सॉरी नो थैंक यू.
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा,
0: मिलेगा. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: तुम्हारा सॉन्ग अरिजीत सिंह की आवाज में गाना आ रहा है, मतलब मजा आता है ना कभी कभार अरिजीत सिंह की आवाज, मतलब ही इज लाइक परफेक्ट ड्राइव पार्टनर आई थिंक सो. बस अरिजीत सिंह के गाने सुनते रहो और जो सफर है सुहाना लगता रहेगा. और यहाँ पर जब सफर में मेरा साथ हो तो थोड़ा सा और स्पाइस आ जाता है, हॉटनेस आ जाती है राधर. Of course, because you have tuned in 89.6 Mirchi One, it's hot. और एक बड़ा ही हॉट मतलब गर्मा गर्म सा अच्छा खासा सवाल लेकर आई हूँ मैं आपके लिए यहाँ पर. Well, सवाल क्या है, लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट है, सीन सुनाने वाली हूँ, एंड यू जस्ट हैव टू गेस विच सीन इज आफ्टरीन टॉकिंग अबाउट, विच मूवी इज आफ्टरीन टॉकिंग अबाउट. एंड दिस पर्टिकुलर डायलॉग गॉट वेरी वेरी वायरल लास्ट ईयर, एंड जस्ट ऐसे ही है भैया पता नहीं क्यों, बट मूवी इतनी भी नई नहीं है, कुछ साल पुरानी है, आप सुनोगे तो पता चल जाएगा. सो हियर इट गोज, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट, सीन टेस्ट.
2: नो
3: तो लेती क्यों?
2: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं.
3: कैसे है सेंसेशंस?
2: सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई, चुल.
0: ऑल राइट, ये जबरदस्त डायलॉग. कैन यू से दैट बाय द वे द एंटायर थिंग एट वन गो? आई मीन दैट्स क्वाइट अ डायलॉग, मतलब जबरदस्त तरीके से ये डायलॉग या एक्ट्रेस ने कहा. एंड बिफोर आई स्पिल आउट मोर डिटेल्स अबाउट दिस मूवी एंड इवेंचुअली आई टेल अबाउट दिस मूवी, लेट मी टेक अ लीव फ्रॉम हियर. अगला गाना आपको सुना रही हूँ, 5000 1896 इज माई नंबर. यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आई है, यहाँ पर बहुत उपेंद्र शर्मा, समायरा, देन आई हैव योर, और कौन है, कुमैल, ये सारे लोगों का मैसेजेस आए हैं. लेट मी गो एंड रिप्लाई टू देम. मीन वाइल आप अगला गाना सुनो फहीम अब्दुल्ला की आवाज में, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ द ईयर 2025, दैट इज सैयारा का टाइटल ट्रैक. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा, इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, बहुत उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हू दैट?
5: अकबर।
6: अकबर हू?
5: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
6: खट खट, हू दैट?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Very good morning and welcome back. Aap sun rahe ho Simply Afreen ko right here on Mirchi Mornings. देखिए यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था. एक सवाल पूछा था मैंने आपको, रादर एक सीन सुनाया था और आपने गेस करना था आखिर आफरीन कौन सी सीन और कौन सी मूवी की बात कर रही है. सी हियर इट गोज.
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट सीन टेस्ट.
2: तुम बीमार हो?
3: नोप.
2: तो लेती क्यों?
3: मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं.
2: कैसे सेंसेशंस?
3: सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, दगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट, दबदबाहट, चटपटाहट, फड़फड़ाहट, सुगबुगाहट, कुलबुलाहट, गुदगुदाई, चिलमिलाई, चुल.
1: All right. What a sensational dialogue this was. In fact, काफी वायरल हुआ था exactly मेरे ख्याल से 2 साल पहले. काफी रील्स हमें ये डायलॉग की सुनाई दी थी, दिखाई दी थी. बट कौन सी मूवी है? यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं. माई फ्रेंड्स, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट. कभी कभार ऐसा होता है ना यार, ये डायलॉग सुना है, ये एक्टर मालूम है, एक्ट्रेस मालूम है, लेकिन वो कौन सी मूवी थी, कौन सी मूवी थी, ऐसा होता है राइट. अगर किसी को अभी भी पता है तो 5000 1896 इज द नंबर. You can connect here and let me know, message करके कि answer क्या है. But meanwhile यहाँ पर जिसके already answers आए हैं, जैसे यहाँ पर अभी फिलहाल just now आपने voice message भेजा है, भाई अब मैं आपका voice message play नहीं कर पाऊंगी. अमल खान, ये movie आपने बिल्कुल सही बताई है. धीरज का message आया है, चीनू का message आया है, सूरज अब्दुल रजाक, then I have here, who is this, भाई अपना नाम लिखा करो, मोहम्मद शाहिद, उपेंद्र शर्मा, समायरा कुमैल and so many many many more people here. So, सभी का जवाब ये है कि भाई आफरीन जो मूवी की बात कर रही हूँ और ये जो लड़की है ये परिणीति चोपड़ा है, मेरी फेवरेट हीरोइन यार. और मूवी है हंसी तो फंसी फीचरिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा. वैसे ये मूवी ना इतनी चली नहीं थी, थोड़ी सी फ्लॉप शॉप सी हुई थी, लेकिन मैं क्या है ना, मैं थोड़ी सी परिणीति चोपड़ा की फैन हूँ तो मैं उनकी ना हर मूवी देख ही लेती हूँ. क्या है ना, वो फर्ज है, ये देखना है मैंने, तो बस उस हिसाब से मुझे इतनी भी ज्यादा कोई बुरी नहीं लगी थी. लेकिन यस, परिणीति चोपड़ा की मूवी का अगला गाना सनमपुरी की आवाज में शिप्रा गोयल का साथ. व्हाट अ लवली सॉन्ग दिस इज यार. बने रहेगा मेरे साथ, इन्हीं आफरीन के साथ, माइक से दिल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: मुझे मेरी जॉब के लिए रोज 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है, थक जाता हूँ, क्या करूँ?
1: ओ मैन, ये तो बहुत टायरिंग है। तू कैब चलाना छोड़ दे भाई एंड डू सम अदर जॉब।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस।

0: देखिए, इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में तो हम जानते ही है, दैट हर 100 किलोमीटर के बाद लैंग्वेजेस बदलते हैं, खान पान बदलता है, कपड़े बदलते हैं, लेकिन वन थिंग विच कनेक्ट्स अस ऑल इज द आर्ट फॉर्म. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और आज एक ऐसे ही आर्ट फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, एंड दैट इज कथक. जी हाँ, व्हेन आई टॉक अबाउट कथक या फिर मैं जब भी देखती हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल डांस फॉर्म फिल्ड विद एलिगेंस ग्रेस. और वही एलिगेंस और ग्रेस लेकर मेरी स्टूडियो में अब हमारे साथ जुड़ी है मौसमी शाह जी, एंड शी इज अ फेनोमिनल कथक डांसर, कोरियोग्राफर, टीचर, और बहुत पुराना नाता है इनका कथक के साथ. वेलकम टू द स्टूडियो. आपका नाता कब से जुड़ा है और वॉट इज इट अबाउट योर पैशन अबाउट कथक?
1: सो मैं कहूँगी कि पूरी जिंदगी हो गई मुझे कथक करते हुए, क्योंकि मैंने 3.5 ईयर्स की उम्र से शुरू किया था.
0: Lovely.
1: और अब माशाल्लाह मुझे 20 साल सिखाते हुए हो गए और 23 साल की मेरी ट्रेनिंग रही है. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में मेरी ट्रेनिंग रही है, फर्स्ट इन एमपी फॉर 14 ईयर्स एंड देन इन महाराष्ट्र अंडर गुरु रोहिणी भाटे जी फॉर 2 ईयर्स एंड देन फर्दर कथक केंद्र दिल्ली, विच इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ कथक इन इंडिया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संगीत नाटक अकेडमी. सो फ्रॉम देयर आई हैव डन माई मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन इन कथक.
0: लवली. मतलब इट्स नॉट जस्ट अ डांस फॉर्म, इट्स मोर देन पैशन, इट्स समथिंग यू आर लिविंग एवरी डे.
1: यस.
0: सो यू आर कैरिंग द लेगेसी ऑफ कथक अक्रॉस द ग्लोब. प्लीज शेयर अबाउट दैट विद अस.
1: ओके. सो एज सून एज आई पास्ड आउट फ्रॉम कथक केंद्र, आई वॉज सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, विच हैज सेंटर्स अब्रॉड टू प्रमोट एंड प्रोपगेट इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स अमंगस्ट द नेशनल्स ऑफ दैट दोज कंट्रीज. सो आई हैव ट्रैवल टू साउथ अमेरिका एंड रशिया, तजिकिस्तान, इट्स इन, इट यूज टू बी इन फॉर्मर USSR, एंड आई हैव टॉट and stayed there for a period of 2 years, 5 years, and then I have taught in UK, USA, and I have traveled with my guru's team to Sri Lanka.
0: Lovely.
1: So yeah, it's
0: ग्रेट. बहुत ही लंबा सफर रहा है कथक का इनके साथ. और हमारे साथ भी यहाँ पर है ये बताने के लिए कि कतर से किस तरह से कथक जुड़ा हुआ है, एंड थोड़ी ही देर में हम बात करेंगे राइट हियर ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स आफरीन के साथ. माइक से दिल तक बने रहिएगा राइट ऑन मिर्ची.
2: मिर्ची फ्रेश माल.
3: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Gabbana.
1: Burka, burka. La vieja la burka.
2: Milchi, burka.
3: हेलो
4: हेलो मनोज जी।
3: हाँ जी
4: सर, ये वर्कशॉप से बोल रहा हूँ। आपने गाड़ी दी थी ना सर्विस के लिए
3: जीती
4: है। हाँ सर, सर नहीं सर, वो अभी तो ठीक नहीं हुई है सर। मेरी बात हो गई है, 40,000 रुपए देने के लिए तैयार है ये।
3: 40,000 रुपए?
4: हाँ सर, वो मेरी कबाड़ी वाले से बात हुई है, 40,000 रुपए दे रहा है सर वो, और मना लिया उसे।
3: कोई तीसरी सर्विस है? किस चीज के कबाड़ी?
4: नहीं, तीसरी सर्विस है, मेरे को मालूम है। आप ये आप देखे आए ना गाड़ी, ये सर्विस के लिए हमको दी थी ना आपने, तो उसकी बात हो गई है। 40,000 रुपए देने को तैयार है कबाड़ी वाला।
3: कबाड़ी वाला मतलब किस चीज के देने के लिए तैयार है? गाड़ी नई है, सर्विस तीसरी हो रही है।
4: नहीं सर,
3: शॉप में दी है कबाड़ी, मतलब समझ नहीं आ रही मेरे।
4: मैं समझाता हूँ सर। आपकी जो गाड़ी थी ना
3: जी,
4: उसकी नॉर्मल सर्विस हो गई थी।
3: हाँ?
4: बढ़िया चकाचक हो गई थी सर। हमारा जो ये मैकेनिक है ना छोटू, ये टेस्ट ड्राइव पे ले गया था उसको। अच्छा, जब ये गया है ना, तो ये जो रेल की पटरी आगे पड़ती है ना हमारे वर्कशॉप से, रेलवे पटरी पे इसकी गाड़ी, इसने गाड़ी बंद कर दी सर पटरी पे।
3: अच्छा,
4: इस गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं सर, वहाँ से ट्रेन आ रही थी सर, आपकी गाड़ी के परखचे उड़ा दिए उसने। अब मैं तो उसको चपेट मारी है, रो भी रहा है बैठ के। तो वो कबाड़ी वाले को दिखाया, जो सारा तो सामान बिखर गया है, जो बचा है उसका 40,000 दे रहा है।
3: पागल हो गया है तू क्या?
4: सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 40,000। सर ट्रेन की पटरी में अटक गई, हम क्या कर सकते
3: हैं? ठेका ले रखा ट्रेन की पटरी।
4: मैं आपको
3: बात बात की बात नहीं है मेरी, सुन तो।
4: मैं
3: कोर्ट से लेकर सब सबको अंदर कर दूंगा, बम करा दूंगा, गैराज पर आजिए छोटी जाएंगे ट्राई लेने। रोटी का काम क्या है? गाली ड्राइव करेगा?
4: अच्छा सर, सर सर इतना गुस्सा नहीं मनोज जी, इतना गुस्सा
3: नहीं।
4: सर पहली बार मेरी हालत बुरी हुई है मनोज जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड।
3: सर सर सर सर, सर
5: आपकी गाड़ी सही सलामत वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ पे आपने वर्कशॉप पे दी थी। एक मजाक चल रहा था, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। मुर्गा बन गया है आपका।
4: मेरे साथ हंस के बोल दीजिए आप।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and The Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
8: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
9: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
10: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए, जब एज एक्सपैट्स हम हमारे देश छोड़कर आते हैं तो बहुत सी चीजों की याद आती है ना, खाने पीने की याद आती है, लोगों की याद आती है, एंड साथ ही साथ कुछ आर्ट फॉर्म्स की भी याद आती है। जैसे हम इंडिया की अगर बात करें तो इतनी कलरफुल और वाइब्रेंट जगह है, और इस कलरफुल वाइब्रेंट जगह से इतने सारे डांस फॉर्म्स जुड़े हुए हैं, और आज ऐसे ही एक डांस फॉर्म के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंड दैट इज कथक। सो यस, जब ऐसी चीज़ ना हमारे कतर में होती है ना, इट रियली टेक्स अस, इट लिटरली टेलीपोर्ट्स अस बैक टू आर प्लेस, बैक टू आर रूट्स। और वो ले जाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है मौसमी सहाय जी, जो यहाँ पर हमारे कतर में कथक को इतनी खूबसूरती से जिंदा रख रही है, एंड दैट टू विथ हर डांस क्लासेस। मौसमी जी, प्लीज टेल अस, प्लीज टेल आवर लिसनर्स अबाउट योर डांस क्लास हियर।
2: So right now we are located in two places. One is Wakra and one is Old Airport.
1: Yeah.
2: तो हमारे पास 6 साल की उम्र से और कोई एज लिमिट नहीं है, कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी सीख सकता है। We have professional कथक courses जिसमें आप 7 साल का डिग्री आप ले सकते हो। हम विशारद संगीत महाविद्यालय मुंबई से हमारा एफिलिएटेड है कोर्स, और आप 7 साल की ट्रेनिंग के बाद आपके पास एक डिग्री होती है। अगर आप उसको परस्यू करना चाहें, हालांकि मेहनत बहुत है उसमें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेमी क्लासिकल क्लासेस फॉर लेडीज प्रोफेशनल्स हु डोंट वांट टू परस्यू इट एज अ करियर और एज डोंट वांट टू टेक इट एज अ स्टडीज थिंग। तो उनके लिए हमारे पास अलग क्लासेस हैं सेमी क्लासिकल्स की, और उसमें हम लोग जैसे कोई सॉन्ग की कोरियोग्राफी होती है वो सिखाते हैं, बट बेसिक्स के साथ, कथक की वोकैबुलरी के साथ।
1: वाओ
2: जी।
1: एंड आपकी क्लासेस का नाम, दैट इज MK आर्ट्स एकेडमी, राइट?
2: MK स्टैंड्स फॉर मौसमी कथकालय। कथकालय का मतलब है कथक का स्कूल।
1: लेडीज, जैसे इन्होंने कहा कि 6 ईयर ऑनवर्ड्स देयर इज नो एज बार फॉर इट, इफ समवन इज लुकिंग फॉर पर्टिकुलरली कथक क्लासेस, तो ये रही MK आर्ट्स एंड एकेडमी, एंड इसकी आपको झलक चाहिए तो उसके बारे में भी बात करेंगे राइट हियर ऑन द शो मिर्ची मॉर्निंग्स, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।

0: देखिए, आजकल की ये भागती दुनिया में पैशन को दिल में जिंदा रखना एक बात है, लेकिन पैशन को हर रोज जीना वो और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और जहां पैशन की बात कर रहे हैं, आज हम बहुत ही खूबसूरत डांस फॉर्म जो है कथक, उसके बारे में बात कर रहे हैं मौसमी साहा जी के साथ। एंड मौसमी जी, कथक इज अ पैशन और मोर देन दैट फॉर यू?
1: इट्स माई लाइफ।
0: इट्स योर लाइफ, वाओ, दैट्स लवली। एंड आजकल की ये दुनिया में जहाँ पर एकेडमिक्स में इतना ज़्यादा जोर रहता है, हाउ डिफिकल्ट और हाउ इट वॉज योर जर्नी टू लाइक टेक कथक एज अ करियर फॉर यू?
1: सो हमारे टाइम पे तो हम लोग बैलेंस करके चलते थे, कथक करना है तो मतलब करना है, ये नहीं कि 10th हो गया या 11th हो गया, 12th हो गया या कॉलेज में है तो नहीं करेंगे। हम सब जो परस्यू करते हैं कथक को, वो हम जीते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि आपके आपके लाइफ का पार्ट बन जाती है। तो आप जैसे छोटे बचपन से आप शुरू करते हो, कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं जो 5 साल की उम्र से शुरू किए हुए हैं, वो अभी भी चाहे उनका 10th बोर्ड्स चल रहा हो या 12th बोर्ड्स चल रहा हो, वो परस्यू करते हैं क्योंकि उसके बिना रह नहीं पाते हैं, और साथ साथ बैलेंस करना सीख जाते हैं बच्चे।
0: लवली, सो दिस इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन आई वुड से कि कथक ही क्यों ना हो या कोई और डांस फॉर्म या आर्ट फॉर्म जो लोग शौक है करना है बट पैशन है लेकिन आगे नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक सो मौसमी शाह जी इज अ लाइव एग्जांपल हियर, हु हैज टेकन हर पैशन टू नेक्स्ट लेवल एज अ ब्यूटीफुल करियर राइट हियर। एंड अगर आप ये विटनेस करना चाहते हो लाइव, सो वेयर इज इट मौसमी जी?
1: So every year we do a students showcase which is called Virasat. So the legacy that we pass on to the next generation. So this is the 3rd edition and it is happening on 15th of May, DPS Monarch at 5 PM. And this year specifically we are making the 2 students of Kathakali or MK Arts are making their debut performances. So 8 saal ki training ke baad ye pehla saal hai jisme wo apna स्टेज का करियर शुरू करेंगे। तो बेसिकली हमारे जितने आर्ट फॉर्म्स हैं क्लासिकल, वो सब सोलो आर्ट फॉर्म्स हैं, वो कोरियोग्राफी के लिए या उसके लिए नहीं बने हैं, ग्रुप के लिए। और उसके अलावा हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 70+ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, और हर स्टूडेंट जो है कथकाले का वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और आपको हर तरह की वैरायटी दिखेगी, ट्रेडिशनल फॉर्मल कथक से लेकर और सेमी क्लासिकल के स्टूडेंट्स भी हैं जो कि कथक का ही आइटम्स प्रेजेंट कर रहे हैं।
0: ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एंड ये कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अगर हमारे लिसनर्स देखना चाहते हैं, हाउ कैन दे रजिस्टर फॉर दिस?
1: सो आप लूमा में रजिस्टर कर सकते हैं, विरासत 3 एडिशन 3 के नाम से हमारा इवेंट है, और DPS मोनाक में हो रहा है 15th मई को 5 PM।
0: ऑलराइट, सो एनीवन आउट देयर जो इंटरेस्टेड है, शायद क्लासेस करना है या फिर बस कथक डांस फॉर्म बहुत पसंद है, तो आई थिंक सो यू शुड बी देयर ऑन 15th ऑफ मे DPS मोनार्क। और रजिस्ट्रेशन जैसे उन्होंने बता दिया है आप ल्यूमा में कर सकते हैं, राइट? सो बने रहिएगा मेरे साथ यानी आफरीन के साथ, माइक से दिल तक, राइट ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: एक मंच जो दर्शाएगा 2500 साल पुरानी और अनोखी कला, जहां गूंजेगा इतिहास, थिरकेंगे कदम, जहां सुर, ताल और कथक बनेंगे एक ऐतिहासिक संगम। MK Arts Academy presents Virasat 3, sponsored by Applebee's. Friday, 15th May, DPS Monarch School, 5 PM onwards. Entry free.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, it's hot.

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
6: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: अजय अतुल, द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
8: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
9: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
8: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
7: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold
6: eye. Only on Mirchi, it's hot.
10: Cut, cut.
11: Who there?
10: Whom are you?
11: Whom are you who?
10: Aray, whom are you looking for, madam?
11: Cut, cut. Who there?
12: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए आजकल की ये शॉर्ट स्पैन वाली दुनिया में एक पैशन के साथ में, एक खूबसूरती के साथ में अगर कोई पेशकश की जाए और उसमें आपका ध्यान बटा रहे तो भाई बहुत बड़ी बात है। And that's the magic, I think, so Kathak does. Very good morning. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings. और ये आदत हो गई है ना, हमें reels देखते हैं and you're just scrolling for 10-15 seconds. ऐसे में passion किस तरह से आपको खींच लेकर आता है, दैट इज वॉट योर मौसमी शाह जी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दे रही है, जो कथक को जी रही है। एंड मौसमी जी, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है कथक पर कितना है आपके हिसाब से? हाउ हेल्पफुल इट इज एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट?
2: इट इज़ हेल्पफुल बिकॉज इट लेट्स अस कनेक्ट फ्रॉम, कोई बाउंड्रीज नहीं रहती हैं, पूरे वर्ल्ड से हमें लोग फॉलो करते हैं, हमारा काम पसंद करते हैं और उसको रेप्लिकेट करने की भी कोशिश करते हैं। तो वी आर ऑन सोशल मीडिया विद द नेम MK आर्ट्स अकेडमी, आप इंस्टाग्राम पे हमें पाओगे और फेसबुक और यूट्यूब पे मौसमी कथकालय के नाम से हम लोग हैं और आप वहाँ हमारे काम के बारे में थोड़ी सी झलक देख सकते हैं।
1: लवली, ब्यूटिफुल। एंड एक आपने मेरे से बहुत अच्छी बात बताई कि कोविड का वो टाइम था जब आपने सोशल मीडिया को आपके एडवांटेज के लिए यूज़ किया, और वो कैसे, आई मीन हाउ कैन अ डांस, जब हम तो देखते हैं शॉर्ट्स में बट इट्स अ क्लासिकल डांस फॉर्म, राइट? सो सोशल मीडिया में अब जैसे दूर से भी कोई आपसे सीख सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं ऑनलाइन, मैंने एस्टैब्लिश ही MK आर्ट्स को 2020 में किया था ड्यूरिंग कोरोना के टाइम पे, तो मेरे पास अराउंड 80+ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सीखते थे।
1: लवली।
2: और बस हम लोग को पोस्ट डालनी होती थी और वी वुड हैव जूम का या गूगल मीट का मीटिंग्स। एंड अभी भी मेरे साथ पिछले सात साल से कुछ लोग कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं उस टाइम से लेकर अभी तक, जो सीख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। सून देयर इज़ गोइंग टू बी शो फ्रॉम माई स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि मुझसे सीखते सीखते अब उसने अपना भी स्कूल वहाँ खोला है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे बहुत जगह से हमसे लोग जुड़े हुए हैं और सीखते हैं।
1: देखिए भाई, इट डांस आर्ट फॉर्म हैज नो बैरियर्स थैंक्स टू सोशल मीडिया यहाँ पर। और अगर आप भी ऐसे किसी को जानते हैं कि जो हाँ कथक में बहुत इंटरेस्टेड है, एंड आज भाई हमने रेडियो पे सुना है मौसमी शाह जी के बारे में, लेट्स गो हैव अ चेक MK आर्ट्स अकेडमी इज अ पेज, इंस्टाग्राम पेज, उन्हें भी शेयर कर लीजिएगा। यू नेवर नो के अगले कुछ दिनों में वो उनसे यहाँ से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दे, राइट? सो मौसमी शाह जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। यू स्टे ट्यून्ड विद अस, दैट इज माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरी आवाज बैठ गई है, मैं क्या करूं?
1: अरे तो आवाज को अपना कंफर्म टिकट दिखाओ, उसको बोलो खड़ी हो जाए।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi Mornings brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: मिर्ची घड़ी का इशारा सुबह के 9 बजे की तरफ और आप सुन रहे हो सब्जी आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: देखिए, जो लोग डांस फॉर्म में और इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं ना, उनके लिए वीकेंड प्लान लेकर आई हूँ मैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज हमारे शो पर, ऐसे तो मेरे साथ में मौसमी जी यहाँ पर जुड़ी हुई है, एमके आर्ट्स एकेडमी की, जो ये कथक की लेगेसी को कतर में लेकर आई है। वो उन्होंने हमारे साथ में बहुत अच्छे कथक के बारे में बात शेयर की, उनके डांस फॉर्म के, ये डांस फॉर्म, ये डांस क्लास के बारे में बात शेयर की है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मौसमी जी।
1: सो मच फॉर हैविंग मी।
0: यस, मैं माधुरी के बारे में बात कर रही थी। मी बीइंग अ लेम पर्सन जो सिर्फ बॉलीवुड में कथक जानते हैं, रिलेट करते हैं, इफ आई एम राइट, कथक
1: माधुरी हैज आल्सो लर्न्ड
0: राइट। हाँ, लेकिन जो असली रियल वाला कथक अगर आप विटनेस करना चाहते हो, देन 15th मई इज द डेट और डीपीएस मोनार्क इज द प्लेस। शाम 5 बजे यहाँ पर हो रहा है एमके आर्ट्स एकेडमी का जबरदस्त परफॉर्मेंस। एंड मौसमी जी, कुछ और बताना चाहेंगे आप इसके बारे में बिफोर यू गो?
1: तो आप ज़रूर आइए, दिस इज़ द ओनली कथक फेस्टिवल दैट वी ऑर्गेनाइज एवरी ईयर और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अपने अपनी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं ल्यूमा पर, विरासत 3 के नाम से, और ज़रूर आइए। वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू देयर। थैंक यू।
0: लवली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो। मौसमी शाह जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर शो।
1: थैंक यू आफरीन, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
0: आप हमारे साथ बने रहिएगा, माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La virba la murga.
1: Mirchi, murga. हेलो
2: उसको पेरों को पीछे लगा के उसको को आगे करो।
3: हेलो
1: हाँ जी
3: ये भाई साहब ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
1: कौन सी गाड़ी आपकी?
3: पेरो है स्टीम है एक सेकंड आप होल्ड करें।
2: अरे आ गई क्या तो रात उठाइए वहाँ से वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास रात उठाइए गाजियाबाद से उसने दोनों आ गए।
3: हेलो रोहित जी मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है 6-7 गाड़ी है ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का
1: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब बताओ कौन सी गाड़ी आपकी।
3: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ मैं चेक नहीं दे पाऊंगा मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
1: ठीक है
3: इसमें मेरी अभी तो आप तो लिखिए एक
1: मॉडल
3: मॉडल आप लिख लो इसका एक सेकंड आराम प्रकार से गाजियाबाद से उठाइए क्या मॉडल है उसका
1: 2000
3: यार रोहित एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो किसी तरह गाड़ी इंश्योर कर दो ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म मैं नहीं जानता कहां की गाड़ी थी कुछ था।
1: हेलो
3: हेलो हाँ जी कौन बोल रहे भाई साहब
1: अजय शर्मा।
3: अजय जी एस एम मेरे पास 28 गाड़ियां हैं इस वक्त।
1: अच्छा आपकी अपनी है
3: अब उसको आपको क्या लेना है यार मेरी अपनी
1: नहीं, उसी
3: मैं आपको अच्छा। बताता हूँ 3 गाड़ियां गाजियाबाद से उठाई हैं अच्छा। 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं बाकी सारी दिल्ली की हैं।
1: चोरी की है क्या?
3: हाँ वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
1: देखना पड़ेगा आप कैसी बातें कर रहे हैं
3: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो आप मैं
1: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
3: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा
1: बात करूंगा ना आपसे
3: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
1: अरे सर ऐसा काम नहीं है मेरा ना
3: आप नंबर लिख लेना लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो एक सेकंड रुकिए।
2: हाँ अरे तो ना बिक्री तो गाड़ी को काट देना उसके पार्ट्स बेच दे।
3: हाँ जी भाई तो आप ये कर दोगे ना पूरे
1: शाम को बताता
3: नहीं आप वैसे कर दोगे ना पूरे
1: क्या कर रहा हूँ शाम को फोन करके बताऊंगा।
3: अजय जी ऐसा है ये जितनी गाड़ियां है ना ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा
1: करो आपको देखना चाह रहा था
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी
7: आएंगे दीदी आएंगे
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: श्रेया घोषाल की प्यारी सी आवाज और तोशी रायना के साथ राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना और जुड़ गई है आपके साथ ये आवाज। वो आवाज जो हर रोज आपका फायदा करती है और वो कैसे, एक्सचेंज रेट सुना कर यार। एब्सोल्यूटली बेस्ट एक्सचेंज रेट आई पे के आज कुछ इस तरह से है। एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 25.99, वहीं पाकिस्तानी रुपीज जनाब इट इज एट 77.20। बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.66 पर है। श्रीलंकन रुपीज इज एट 88.34 और नेपाली रुपीज इज एट 41.57। ये थी आज की एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां और खुशियों का वन एंड ओनली फॉर्मूला दैट इज 89.6 मिर्ची 1। माइक से दिल तक आफरीन के साथ इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100813। एक मंच जो दर्शाएगा 2500 साल पुरानी और अनोखी कला, जहां गूंजेगा इतिहास, थिरकेंगे कदम, जहां सुर ताल और कथक बनेंगे एक ऐतिहासिक संगम। MK आर्ट्स अकेडमी प्रेजेंट्स विरासत 3, स्पॉन्सर्ड बाय Applebee's। फ्राइडे 15 मई DPS मोनार्क स्कूल, 5 PM ऑनवर्ड्स, एंट्री फ्री।
6: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: सोनू निगम की आवाज, ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची जुड़ गई है आपके साथ। ये आवाज वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और ये वो वक्त है जब आफरीन कुछ खूबसूरत सी लाइंस, शेर शायरी ये आपके लिए पेश करती है। कहीं उन्हें कहीं मुझे पसंद आई हो, कहीं मुझे कुछ रिलेटेबल लगी हो, बस खूबसूरत सी कुछ ख्यालात आपके लिए मेरी डायरी से,
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो आज की कुछ लाइनें ऐसी है, अर्ज किया है, ये लाजमी भी नहीं कि हर वक्त मुकम्मल रहे जिंदगी, ये लाजमी भी नहीं कि हर वक्त मुकम्मल रहे जिंदगी। कुछ तमाशे हंगामे भी जरूरी हैं, कुछ तमाशे हंगामे भी जरूरी हैं इस खताबी जिंदगी के पन्ने रंगीन करने के लिए, है ना। हम अक्सर सोचते हैं यार कितना ड्रामा है हमारी जिंदगी में, ऐसा चल रहा है, ये शिकायत वो शिकायत, लेकिन कुछ साल बाद जब वी गो बैक एंड वी ट्राई टू रिमेम्बर सम थिंग्स तो हंसी आती है कि अच्छा इस ड्रामे पर हमें परेशानी हुई थी, अरे ये तो कोई बात ही नहीं थी, बट इट्स ऑल सो कलरफुल, है ना। फिलहाल के लिए आफरीन जुड़ी है आपके साथ राइटर अनमिर्ची मॉर्निंग्स, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से हम अज्यूमिंग है आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
3: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुलशन सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
2: शाहरुख खान इतना चार्म कहाँ से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: श्रेया खुशाल की आवाज राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और जुड़ गई है आपके साथ एक नहीं दो दो आवाजें। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और साथ में है मिर्ची अंशु। अंशु
1: क्या हाल चाल आफरीन?
0: हाल चाल तो ऐसा है कि थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी नर्वसनेस है कि अब बस कुछ ही दिन में ही नहीं, मतलब जस्ट दिस वीक या
1: लाइफ्स मोस्ट ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट फॉर यू।
0: यस, और जो लोग समझ रहे हैं कि सोचने की कोशिश कर रहे हैं क्या चल रहा है, तो बस मैं ये बता दूं कि इंशाल्लाह मैं हज पे जाने वाली हूँ, बस उसी की तैयारियाँ चल रही है एंड इट्स एब्सोल्युटली अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। एंड बस वही कहता है ना कि हाँ, बस टेंशन भी रहती है बट एक्साइटमेंट भी ऑफ कोर्स फुल है।
1: जब ऊपर वाले की इबादत के लिए हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अंदर से कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट रास्तों में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना, अपने आप सारी की सारी सॉर्ट होती है
0: एंड
1: इन द एंड जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो हम एंड इनफैक्ट हमारे जितने भी लिसनर्स हैं मिर्ची की प्रीटी, आई एम प्रीटी श्योर सबके दिल में इस वक्त एक ही ख्याल है कि तुम्हारा जो सफर है वो मुकम्मल हो, बहुत अच्छी तरह से हो
0: इंशाल्लाह,
1: ऊपर वाला तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करे और पूरी करे,
0: आमीन। और बस मेरे साथ में आई एम श्योर मुझे सुनने वाले और भी कुछ होंगे जो आप जाने वाले होंगे या फिर कुछ आपके जान पहचान वाले होंगे वो चले गए होंगे। काफी दिनों से हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे यहाँ पर एंड ऑल दिस थिंग्स, अब तक तो वो सारा कुछ हो चुका होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन एंड आई होप आप लोग के नुसू कार्ड्स आर रेडी। इसके बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी विच इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी, नुसू कार्ड के बगैर वहां पर इट्स द मैंडेटरी थिंग दैट उसमें सारे आपके डिटेल्स होते हैं एंड दैट इज द गवर्नमेंट की तरफ से वहां से ये मैंडेट है। तो ये सारी चीज आपकी सब इन प्लेस होंगी और बस मुझे अगर कोई सुन रहा है तो हमें भी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। एंड अंशु ओवर टू यू।
1: एब्सोल्युटली दर्शन रावल नसीस कौर की आवाज में एंजॉय करते हैं एंड कुछ देर में करेंगे मीठी मिर्ची की शुरुआत। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची,
0: इट्स हॉट।

0: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: सर बाइक चलाते चलाते मच्छर मुंह में चले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्या करूं?
0: अरे गोचू, जब तेरे को पता ही है मच्छर सामने से आ रहा है, तू रॉन्ग साइड क्यों चला रहा है?
2: खोपड़ी तोड़ रही, खोपड़ी।

0: Well, Navrat Chand's voice, Harshdeep Kaur ka saath, and what a power pack track it is from the film Ek Ladki Ko Dekha. Lekin kahin na kahin is gaane ne mujhe nostalgia mein zaroor leke gaya. Well, wo yaad hai? Yahi gaana. Wo ek wedding ka scene. Wo ek particular one step jisme hum dono haathon ke saath movement kar rahe hain. Hi, kya din tha yaar, hai na? And yahi gaane jab ek bar phir se revise hokar, remix hokar hamare beech aate hain na, to mujhe in dono acha isliye lagne laga hai ki purani yaadon ko hum dil se jeete hain and saath hi koi na koi nayapan jo hai isme add ho hi jata hai. That मिर्ची कड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:03.
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: यार वैसे अगर इनोवेशन की बात करूं, नए पन की बात करूं, तो इसकी कोशिश जो है अक्सर हम करते ही रहते हैं.
2: मिर्ची अंशु.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Chaliye, aapki zindagi mein mithas and saath spice ka tadka jo hai is waqt add kar hi diya jaye. Yaar hamari na life mein aksar ye bharpoor koshish hoti hai ki hum jo bhi kare wo achhi tarah se karne ki koshish kare. At least niyat jo hai aam taur par aksar logon ki yahi hoti hai, phir chahe kaam ho, ghar mein rishte nibhane ki baat ho, bahar ki zimmedariyan ho, lagta hai ki bhai jo bhi karna hai dil se karna hai, acche se karna hai, tabhi hame result jo hai wo bhi acha milega. Umeed jo hai kahin na kahin yahi hoti hai and jab koshish jo hai puri shiddat imandari ke sath ki jaye तो 101% यार रिजल्ट कहीं ना कहीं देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है. चलिए, अब यहाँ पर ना मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स हम अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बचपन से लेकर यू नो बुजुर्ग होते तक यानी कि पूरे के पूरे अपनी लाइफ टाइम में हर तरह से करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा कम अच्छा, कभी ज़्यादा अच्छा, सब कुछ होता है. लेकिन इस प्रोसेस में क्या हम वो काम कर पाते हैं या वो जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाते हैं जो हमारे खुद के लिए, खुद से है? भाई खुद से भी तो एक रिश्ता है ना. कभी कभी ऐसा लगता है कि औरों के लिए जीने में इतना नाक हो जाओ कि खुद तुम्हारी भी एक जिंदगी ये बात जो है ना वो भूल ही जाओ. देखो यार, बाहर दूसरों के लिए प्यार तभी निकलेगा जब जिंदगी में खुद के लिए प्यार होगा. बाहर काम बहुत अच्छी तरह से तब कर पाओगे जब खुद का ख्याल सबसे पहले अच्छी तरह से रखोगे. वो कहते हैं ना, खुद से मोहब्बत भी इबादत से कम नहीं होती. जो अपने दिल को समझ ले उसे फिर किसी महरम की जरूरत नहीं होती. थोड़ा वक्त खुद के लिए भी रखा करो. हर बार दुनिया के लिए जीना जिंदगी नहीं होती. तो बस सबके लिए जीना, सब कुछ करना, लेकिन आज जो है जरा सा थोड़ा ज्यादा खुद के लिए जीना. और अगर ये बात अच्छी लगी यार, गुड मॉर्निंग मैसेज. आपको तो ट्रेंड पता है, 5000 1896. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल एक काम करते हैं, इस सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं उदित नारायण की आवाज एंड अगले गाने के साथ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirci. Iskabana puskabana sakabana. Rabbana. Burga burga. La vieva la burga. Mirci burga.
1: हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रही हूँ। हमारी एक स्कीम आई है, क्या आप लेना चाहेंगे?
2: लेकिन मुझे नहीं चाहिए।
1: ओके सर, बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का
3: हमेशा यही होता है, मैं ही फोन करता रहता हूँ, मैं ही पीछे पड़ा रहता हूँ। अब ये भाई साहब करेंगे मुझे फोन?
4: वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
2: बात बताओ, इस नंबर से मेरे पास अभी एक फोन आया था, एक लेडी बोल रही थी।
4: यस सर,
2: जरा उनसे बात कराइए मेरी।
4: सर यहाँ पे तो अभी कॉल पे सारी लड़कियाँ हैं, मुझे मालूम नहीं है किससे आपकी बात हुई है।
2: मैं आपकी बात बताओ, आप लोग किसी को ऑफर देते हो तो आप साथ में गाली देते हो?
4: सर आई एम सो सॉरी सर, ऐसे गाली तो किसी ने को यहाँ देता नहीं है, ऐसा होता नहीं।
2: मेरे पास फोन आया है यहाँ से स्कीम के बारे में,
4: राइट सर?
2: जब मैंने उसको मना किया तो उसने मेरे को गाली दी पलट कर।
4: सर
2: तुम लोग करते क्या हो यहाँ पर?
4: आई एम सो सॉरी, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने से
2: बात कर रहा हूँ।
4: मैं बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं उनसे बात कराता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों कहा गया है हमारे कस्टमर को। बैंक से बात करने के लिए धन्यवाद। कहीं का आजा फोन।
1: सर वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ, फ्लोर मैनेजर, किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ?
2: पास है ना नंबर, इसी नंबर से फोन आया था।
1: यस सर।
2: गालियाँ दे जा रहा है यार वो।
1: सर कौन?
2: अरे यार मेरे को नाम नहीं पता उसका, मेरे को गालियाँ सुनाई जा रहा है।
1: सर मैं उनसे क्षमा, ऐसा सर होता नहीं है हमारे बैंक में कभी
2: यार,
1: भी
2: कैसे
1: मैं
2: नहीं होता यार?
1: नहीं सर, इस तरह की बात कभी नहीं हुई सर आपके कहने से। हम तो ये
2: फोन आ रहे हैं बराबर और मेरे को गालियां दे रहे हैं।
1: सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, कभी हमने इस तरह की कोई हरकत नहीं करी है सर, यही तो हमारी सर्विस है।
2: झूठ बोलेंगे तुम लोग,
1: ऐसी गलतियां आइंदा नहीं होगी। सर बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मुर्गा कहीं का।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये छोटा सा कॉल सेंटर मेरा ही है, ये सारी हरकतें मेरी हैं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है अब।
2: यार तुम लोग ना
3: सर बुरा मत मानिएगा, एक बार मेरे साथ सर हंस के बोल दीजिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, Arijit Singh and Shilpa Rao ki khubsurat si awaaz film ka naam Jawan, and what a lovely track it is. Ye pyara sa gaana to is waqt maine aapko suna diya, and kya kamaal lage yaar. As usual, agar Shahrukh Khan ko dekhne ki koshish kare, Nayan Tara ko dekhne ki koshish kare, kamaal ki jodi. Having said that, itna bata do, chale ya aap kidhar chale ya, feasibility bhi, mauka bhi, dastoor bhi.
1: Mirchi Anshu.
0: Hey, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, take-off karne ki baari jo hai aapki life mein aa hi chuki hai. Bhai, aane wale dinon mein chuttiyan bhi aa rahi hai. And saath hi options and flexibility, dono aapke liye bahut hi zyada hai. Well, Hamad International Airport ne summer season se pehle ek big update announce kiya hai. Jaise-jaise Qatar Airways ka global network expand ho raha hai, waise-waise Doha se flight operations bhi aur bhi bade scale mein grow kar rahe hai. Agar reports ko dekhne ki koshish karein, so currently 26 airline partners Doha ke through operate kar rahe hain, including airlines like Air India, Indigo, Gulf Air, Saudia, Kuwait Airlines, Sri Lanka Airlines and many more yaar. So summer travel rush ko dekhte hue frequencies aur connectivity dono enhance ki ja rahi hai. And honestly, Doha jo hai ab sirf ek city nahi hai, bhai ek global transit heartbeat ban chuka hai. Ye baat aap aur hum bahut achhi tarah se jante hain, chahe east ki baat kare ya west ki baat kare, people, cultures, stories all connecting through one airport, that is our national airport, Hamad International Airport. To फटाफट से अगर इस ईद कहीं ट्रैवल करने की बारी या तैयारी है तो ऑप्शंस जो है ऑलरेडी अपडेटेड एंड बढ़ चुके हैं. जाइए वेबसाइट चेक करिए एंड जहां भी जा रहे हैं मुझे बताना जरूर कि कहां घूमने फिरने जा रहे हो. एंड आपको पता है कि डील क्या है, जहां भी जाएंगे वहां जो भी अच्छा मीठा मिलता है वो लेके आना अंशु के लिए. 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर. आई एम वेटिंग फॉर योर गुड मॉर्निंग मैसेजेस, फील सो गुड टू हियर फ्रॉम यू. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीनवाइल एक ब्रांड न्यू ट्रैक मैं आपके लिए बजा दूं, एंजॉय. बिंदी का नाम अंशु.
2: मिर्ची फ्रेश माल,
3: देसी स्वैग और हाई एनर्जी डांस वाइब के साथ सुनो, व्याह करवा दो जी.

इस गाने को गाया है मीका सिंह और असीस कौर ने, म्यूजिक दिया है व्हाइट नॉइस कलेक्टिव्स ने और लिरिक्स लिखे हैं वायु ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से, विया करवा दो जी, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। अगर सुन

0: में की स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, it's hot.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

जिद पे ना अड़े तो क्यों ना अड़े, जब दिल की बस एक ही ख्वाहिश हो कि अगर उसे किसी से सुनना है तो वो है आप। हाउइंग सेड दैट, आप सुन रहे हैं मीठी मिर्ची, दिस इज अंशु विद यू एंड एक खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द फिल्म संघम। Hey, welcome back. You're listening to me, Timurchi, and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ। एंड देखिए, बात इतनी है कि जब तक दिल जो है जरा सी बदमाशी ना करे तो वो दिल दिल ही क्या है, अगर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बस वो आगे ही बढ़ता जाए, यू नो, दुनिया के दस्तूरों को पूरी तरह से मान कर अपना कर अपनी जिंदगी जीता जाए, तो यार दिल ने फिर आपकी सुनी तो कहाँ ही सुनी। चलिए अब एक काम करते हैं कि आप जो है जरा सी मेरी बात सुन ले, क्योंकि मैं आपको कुछ सुनाने जा रही हूँ। अरे ना वो सब ना जो घर पे सुनाया जाता है आपकी जो हमारी बातें होती हैं वो तो बड़ी मीठी सी होती हैं, जरा स्पाइस की तड़िए ये साथ होती है। वेल, अब आपके बीच पेश करने वाली हूँ मैं एक धुन। 90s की कोई बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म है जिसकी बहुत ही प्यारी सी धुन है, इसके गाने और भी ज़्यादा प्यारे हैं। आपको इस वक्त इस धुन को सुनना है, आइडेंटिफाई करना है एंड साथ मुझे ये बताना है कि ये धुन है तो है किस फिल्म से। एंड तोहफे के तौर पे इस फिल्म का एक बहुत ही टर्फिक सा प्यारा सा पॉपुलर सा ट्रैक कुछ देर में मैं आप तक पहुंचाऊंगी। एंड आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब जब आप अपने जवाब भेजते हैं, खासकर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर भेजते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि आपकी आवाज़ ना ही सिर्फ मैं सुन पाती हूँ बल्कि आवाम जनता तक भी पहुंचा पाती हूँ। जस्ट इन केस अगर ऑफिस में लगे नहीं अंशु रिकॉर्ड तो ना कर सकते, कोई नहीं यार, लिख के भेजना, उसे भी खुशी होती है और अपरंपार होती है। चलिए जी, बातें तो बहुत हो गई, अब जरा इस धुन को सुनने की तैयारी जो है वो कर ली जाए। सो हियर यू गो।

ऑलराइट, धुन तो मैंने आपको सुना दी, बड़ी ही प्यारी सी धुन है। उसके गाने जो हैं बहुत ही ज्यादा टेरिफिक हैं। एक हिंट दे दूं, ये वही फिल्म है जिसमें आपको सलमान खान एंड काजल नजर आए थे। यार इतना हिंट देने के बाद तो अब जवाब पता चल ही जाना चाहिए। 5000186 आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु मीनवाइल सोहम की आवाज एनी अगला प्यारा सा गाना आपके रास्ते। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
3: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उसमें खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
2: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कट कट,
5: हू दैट?
4: भट्ट।
5: भट्ट? अरे भट्ट हूँ।
4: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
5: खट खट, हू दैट?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot. Yeah. Mirchi. Fresh maal.
6: Dreamy vibe aur romantic feel ke saath suno Chand Mera Dil.

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखिए बात नहीं है कि ये गाने तो लूप में हम आपको सुनाई देंगे, लेकिन कोई और गाना है 90s के एरा का, दौर का, जो उस वक्त से लेकर आज तक हम लूप में जरूर सुनते हैं। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, एक ऐसे गाने की बात करूं जो जेन्युइनली रेज बन चुका था, तो उसकी कहानी जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है। वो कौन सी है ये बात तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो धुन मैंने आपके बीच पेश की, जो आपको आइडेंटिफाई कर, बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से, जरा उसकी सही जवाब आप तक पहुंचा दें। लेकिन एक काम करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, एक बार फिर से मैं ये म्यूजिक सुनाने वाली हूं। अगर आपको लगे इस धुन को सुनते ही, इस ट्यून को सुनते ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सी फिल्म से है, सो अभी भी मुझे करेक्ट आंसर जरूर भेजेगा। इट विल मेक मी रियली हैप्पी। 5000 1896 5000 1896 पे विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु, बट फॉर नाउ हियर आई एम प्लेइंग द ट्यून।

0: राइट अब देखते हैं लोगों का क्या कहना है, ये कौन सी फिल्म से है।
1: हेलो अंशु, मे बी दिस मूवी इज प्यार किया तो डर न किया, मैं भी शाहिद।
2: हाय अंशु, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है शेख अहमद। तो जो मूवी की धुन सुनाई आपने, वो मूवी का नाम है प्यार किया तो डर न किया। सलमान खान एंड काजल, अरबाज खान, धर्मेंद्र, रेडियो मिर्ची इज हॉट।
3: हे अंशु, इट इज प्यार किया तो डर न किया, लवली म्यूजिक, वेरी क्यूट मूवी, गुड मॉर्निंग।
4: Good morning, my name is Vinesh Kumar and movie name is जब प्यार किया तो डरना क्या, सलमान खान का काजल।
0: Well, absolutely, आप सबने जो कहा वो पूरी तरह से सही। इनफैक्ट जितने लोगों ने मुझे लिखकर भी रिप्लाई किया, यूसुफ, पराग, सोहेल, थैंक यू सो वेरी मच, और भी बहुत सारे नाम है, बट ये वो लिसनर्स हैं जो हर दिन जरूर मेरे शो में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैंने सोचा उनका नाम जो जरूर लेना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Well, 90s की एक ऐसी फिल्म जिसके गाने, स्टाइल एंड सलमान खान का स्वैग आज भी आइकॉनिक माना जाता है, तो उस फिल्म का नाम है प्यार किया तो डरना क्या। इट वॉज रिलीज्ड इन द ईयर 1998। फिल्म को डायरेक्ट किया सोहेल खान ने, और स्टार कास्ट में हमें नजर आए सलमान खान, काजल, अरबाज खान एंड लेजेंडरी धर्मेंद्र साहब, एंड म्यूजिक दिया था जतिन ललित ने, साजिद वाजिद एंड हिमेश रेशमिया, मतलब पूरे के पूरे धाकड़ जो है इंडस्ट्री के एक साथ इस फिल्म के लिए जुट ही गए थे। एंड दिस फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड बाय सोहेल खान, बंटी वालिया एंड वाशु भगनानी। एंड यार सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है ना, ये लोगों को लगता है कि सलमान और काजोल जो है एक साथ इस फिल्म में पहली बार साथ में आए, लेकिन भाई इन दोनों की पहली फिल्म जो एक साथ की गई थी दैट वॉज करण अर्जुन, वो बात अलग है। एज अ रोमांटिक लीड पेयर इट वॉज प्यार किया तो डरना क्या, जहां पर ये दोनों ऑन स्क्रीन एक साथ नजर आए एंड दिस बिकेम वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पेयरिंग्स। ऑडियंस को सलमान काजोल की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा फ्रेश एंड एंटरटेनमेंट लगी, वो सलमान की मिस्चीवस सी चार्म एंड साथ ही काजोल की वो बबली एनर्जी, एंड यार क्या गजब की फिल्म थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर सलमान खान के आइकॉनिक शर्टलेस ट्रेंड की हम बात करें, जो बाद में बॉलीवुड का रेज बन गया, उसकी बिगनिंग भी इसी फिल्म से हुई थी विद द स्ट्रैग।
5: जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए।
0: हाय, इनफैक्ट हिमेश रेशमिया ने भी एज अ म्यूजिक कंपोजर इसी फिल्म के साथ डेब्यू किया था, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। भाई अगर वो स्टेप को भी कॉपी ना किया या इस गाने को लूप में ना सुना तो फिर क्या ही किया। चलिए काम करते हैं कमाल खान की आवाज में, ये गाना इस वक्त जो है मैं आपको जरूर सुनाऊंगी। गाना पसंद आए, थैंक यू मैसेज, आई एम वेटिंग फॉर यू, 5000 1896। वी विल गेट कनेक्टेड देयर इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। मीनवाइल एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: What a lovely track it is. इतना खूबसूरत सा प्यारा सा गाना, मतलब जिसे सुनते ही कहीं ना कहीं आपका दिल जो है ना वो गुनगुनाने लगे, गाने लगे. तो भाई ये गाना से इश्क ना हो तो फिर क्या ही हो. अरमान फिल्म से इस वक्त ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस वक्त कोई और बात भी मैं आप तक पहुंचा दूं. दैट जेन्युइनली इज म्यूजिक टू इयर्स. Hey, welcome back. You're listening to me, Team Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड इस वक्त जेन्युइनली अगर म्यूजिक टू ईयर्स की बात करूँ तो कुछ ऐसा किस्सा है, एक ऐसी कहानी है हाय जो आपके दिल को सुकून जो है ना जरूर देगी, साथ ही आपको थिरकने में मजबूर कर ही देगी. देखिए ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब जब हमें महसूस हो कि भैया हमारी मेहनत की कमाई जो है उसमें हमें थोड़ा और मुनाफा हो रहा है तो खुशी होती है और अपरंपार होती है. एंड ये खुशी इस वक्त आपके और हमारी जिंदगी में अगर कोई लेकर आया है तो वो है अच्छा वाला एक्सचेंज रेट. राइट यू, जरा देखते हैं आज आईपे मनी के क्या ही हाल है. वैसे अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो दिल बड़े हड़िप्पा वाला हाल होने वाला है. वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 25.99, इसके साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 77.20, बांग्लादेशी टका 33.66, लंकन रुपीज 88.34 एंड साथ ही नेपाली रुपीज 41.57. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां. लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर वन Hindi radio station Mirchi. It's hot. Well, exchange rate is brought to you by
1: Laya Aipe Best exchange rates. Bejo khushiyan aur paise dono hi ghar pe.
0: Alright, चलिए इसके साथ निखिल डिसूजा की आवाज यानी अगला बहुत ही प्यारा सा गाना आपके रास्ते. Enjoy. बंदी का नाम अंशु.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: हेलो रेखा जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोलिए।
3: रेखा जी, मैं से बोल रहा हूँ। आपका हमने प्रोफाइल देखा था, क्योंकि एक लड़के को आपका प्रोफाइल पसंद आ गया है। चाह रहे थे थोड़ा सा आपके बारे में पूछना। आप मेरे को अपनी थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, एज बता देंगे कितनी एज है आपकी?
2: प्रोफाइल में लिखी हुई है, आपने देखी नहीं? 25 साल है।
3: अच्छा, वही मैं नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को। रेखा बता देंगे आप ये कितनी पढ़ी लिखी है? थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है ना।
2: मैंने बीए किया है।
3: अच्छा रेखा, आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि लड़के ने आपको पसंद कर लिया है और मैं चाहता रहा था आपके पापा से बात करना, बल्कि लड़के के पापा भी आपको चाह रहे थे आपसे मिलना। प्लीज माइंड मत करना, आपके कोई टांग में तो चोट नहीं लगी? प्लीज इसको।
2: पर क्यों?
3: नहीं, मैं ऐसी पूछा था। अच्छा मेरे को रेखा एक चीज बता दीजिए, आप हील वील तो ज्यादा नहीं पहनती ना?
2: लेकिन क्यों? हील नहीं, तो आपको पूछना क्या है?
3: नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, हील पहनती है क्या आप? नहीं पहनती? मैं
2: हील तो कभी पहनते भी हैं, कभी नहीं भी पहनते, लेकिन
3: ज्यादातर आप नहीं पहनते हैं।
2: हाँ, ज्यादातर नहीं।
3: हाँ, ये ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा, ये भाग के शादी करना चाहता है, तो मैं यही देख रहा था कि आपके कोई टांग में चोट तो नहीं है, कहीं हील वील तो नहीं पहनती, कहीं भागने में परेशानी हो जाए। तो इस लड़के के माँ बाप आ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको दौड़ा के देखेंगे।
2: क्या बात कर रहे हैं आप?
3: नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस लड़के के माँ बाप आएंगे, ये थोड़ा सा दौड़ा के देखेंगे, अगर आप भाग के शादी कर सकती हैं तो ही वो करेंगे ना। लड़के की बड़ी ख्वाहिश है, बल्कि इसके माँ बाप ये कहते हैं, हमारे चार लड़के थे, सबने ऐसी कर लिया, हम चौथी शादी लड़के की करते हैं, हम वो लड़का भगा के करना चाहते हैं।
2: कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए
3: दोबारा। एक कमाल है, अभी से भाग गई यार।
2: हेलो,
3: देखा आपने फोन काट दिया यार, आप हील नहीं पहनती, आपके टांग में चोट लगी, भागने में प्रॉब्लम क्या?
2: नहीं,
3: दोबारा फोन मैं आप ही को तो करूंगा। लड़के ने आपको पसंद कर लिया, लड़के
2: नहीं बकवास।
3: अच्छा, तो फोन मत काटिए, मेरी बात सुनिए। रेखा,
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं आपकी शादी नहीं करा रहा, आपकी शादी जरूर हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आप मुर्गा बन गई हैं, और प्लीज गुस्सा नहीं और फोन मत काटना यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
2: मेरी शादी के बाद मेरे डैडी से ही करिएगा।
4: नहीं, मैं उनसे जरूर कर लूंगा, लेकिन डैडी से तो नहीं बोल पाएंगे, आप बोल पाएंगे, आप प्लीज बोल दीजिए।
2: नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी।
4: मेरी बात सुनिए, आप अगर कुकड़ू को बोल देंगे, मैं आपकी शादी करा दूंगा, जल्दी से करा दीजिए, मेरा मतलब जल्दी से बोल दीजिए।
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
5: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Adnan Sami ki khubsurat si awaaz and what a lovely track it is from the film Sathya, Vivek Oberoi, Rani Mukherjee. What a gazab ki pairing hai. Ye udi udi udi udte udte. Ab jo hai, aapke beech ek khabar bhi pahuncha do.
1: Mirchi Anshu.
0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू. वेल, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड बात इतनी है कि कोई खास खबर है जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करना चाहूंगी. वेल, इस वक्त अगर हम कतर को देखने की कोशिश करें तो यहाँ आने के बाद, यहाँ पहुंचने के बाद एक स्पोर्ट जिससे डेफिनेटली हमारी जान पहचान हुई एंड कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में से लेकर एक्साइटमेंट भी बढ़ी, सो दैट इज फुटबॉल. जब तक मैं इंडिया में हुआ करती थी भैया, मेरी जिंदगी में ना स्पोर्ट्स के नाम पर दो ही चीजें होती थी. नंबर वन क्रिकेट, हाय मतलब ये हमारे लिए सिर्फ एक खेल नहीं है, एक सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये वो जरिया है, वो मीडियम है जिससे पूरा का पूरा परिवार, समाज, देश जो है ना इकट्ठा एक साथ आता है. एंड वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरे खेल की मैं बात करूं जिससे मैं काफी जुड़ी हुई थी, सो दैट यूज्ड टू बी नदी एंड पहाड़. अरे यार, मोहल्ले में वही खेलते थे बच्चों के साथ, नदी पहाड़ छुअम छुआई पकड़म पकड़ाई, याद है आपको? लेकिन आकतर आने के बाद फुटबॉल सॉकर का क्रेज हमारी जिंदगी में कुछ इस तरह से हुआ कि भैया कम से कम दुनिया के 10 फुटबॉलर्स का नाम तो हम पहचान ही गए. वेल, इस वक्त कतर की फुटबॉल हिस्ट्री कितनी रिच है ये शायद बताने की जरूरत नहीं. तो बस इसे ट्रेजर करते हुए, इसे चेरिश करते हुए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेट किया गया है दैट डॉक्यूमेंट्स कतरी फुटबॉल हिस्ट्री फ्रॉम 1948 टू द प्रेजेंट एंड दिस मार्क्स अ लैंडमार्क इनिशिएटिव टू प्रिजर्व द नेशंस स्पोर्टिंग लेगेसी. ये प्रोजेक्ट है, इसे डेवलप किया है कमिटी फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एंड आर्काइविंग ऑफ कतर फुटबॉलर्स का नाम तो हम पहचान ही गए. वेल, इस वक्त कतर की फुटबॉल हिस्ट्री कितनी रिच है ये शायद बताने की जरूरत नहीं. तो बस इसे ट्रेजर करते हुए, इसे चेरिश करते हुए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेट किया गया है दैट डॉक्यूमेंट्स कतरी फुटबॉल हिस्ट्री फ्रॉम 1948 टू द प्रेजेंट एंड दिस मार्क्स अ लैंडमार्क इनिशिएटिव टू प्रिजर्व द नेशंस स्पोर्टिंग लेगेसी.

जो कि पूरी तरह से कतर की फुटबॉल हिस्ट्री को ट्रेजर एंड चेरिश करने का काम करते हैं. एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड. इसमें काफी सारे पब्लिकेशंस सच एज द स्टोरी ऑफ द बिगिनिंग, कतर इन द गल्फ कप, कतर इन द वर्ल्ड कप, ये सारी बातें जो है यार हमको देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी. तो बस मैं वेट कर रही हूँ कि जल्द से जल्द इसके बारे में और ज्यादा डिटेल आए एंड कतर की रिच एंड कल्चरल फुटबॉल लेगेसी को ना ही सिर्फ हम देख पाए बल्कि बहुत करीब से जान भी पाए. क्या कहती पब्लिक. अच्छा चलो जी एक बात बताओ, फीफा वर्ल्ड कप कतार की वो चार सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का मुझे नाम बताओ जरा, देखते हैं आपको याद है क्या. फीफा वर्ल्ड कप कतार 2022 वो कौन सी टीम थी, जो चार टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची थी, देखती हूँ आपको कितना याद है. सुर निगम की आवाज, रूप कुमार राठौड़, अरिजीत सिंह, सारे बेहतरीन सिंगर्स का मिश्रण जो है ना इस गाने में है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, it's hot.
5: Hello, sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी, ना इक्विटी दे।

0: है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
1: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

जाना कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है

0: अच्छी आवाज़ों में लवली ट्रैक इट इज़, एंड किसने सोचा था कि भाई कोरियोग्राफी से सिंगिंग में कुछ इस तरह से ट्रांजिशन होगा कि गाना जो है ऐसा सुपर हिट बनेगा कि भाई जहां पे इनके मूव्स हमें थिरकने में मजबूर करते थे, वहीं ये गाना हमारे दिल को डोलने में मजबूर कर ही देता है।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड आज एक काम करते हैं, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं, जिसके कल्चर एंड ट्रेडिशन को इतने सालों से हमने जानने समझने की जरा सी एटलीस्ट कोशिश की है, उसके बारे में बेसिकली जेन्युइनली हम कितना जानते हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हमारी कर्म भूमि यानी कि कतर. वेल, ऐसा कहा जाता है कि इंसान को ना और देश दुनिया को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोशिश करने के पहले जहां पे रहते हैं उसके बारे में जरूर जान लेना चाहिए, जरूर समझ लेना चाहिए. अब जरा सोचें भाई, आप इतनी जगह घूमने जाते हैं, लेकिन लेट्स से अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, तो भैया हमारे देश में अपने आप में इतने समृद्ध हैं कि आज तक क्या हम अपने देशों को पूरी तरह से घूम पाए. चलो जी, एक काम कर लो, उस टॉपिक में हम बाद में आएंगे, पहले कतर को तो सही तरह से जान लो. चलिए, आज मेरा आपसे सवाल जो है वो कतर से जुड़ा हुआ है, मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है. ये सेगमेंट ऐसा है जब मैं खाने पीने की बात जो है इस वक्त जरूर करती हूँ. अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करूँ कि कतर में अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, मिठाइयों की बात करें, तो क्या इस वक्त फटाफट से आप मुझे कोई 4 अरबिक स्वीट्स का नाम बता सकते हैं? 4 अरबिक स्वीट्स फटाफट से बताइए. उसके बाद कहीं ना कहीं उनका रिलेशन किसी और देश से कैसे है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि हर एक खाने की चीज की ना एक रिच हिस्ट्री है. तो चलिए, मैं ये जानना चाहूंगी, Do you know the names of around 4 Arabic sweets, जो कि कतर में काफी पॉपुलर या प्रेवलेंट है? 4 ना सही, चलिए 3 ही बताइए. 3 जो है काफी आसान है बताना. 5000 1896 5000 1896. Let's get connected there. Instagram मिर्ची 1 कतरिया मिर्ची अंशु. Meanwhile, लकी लेके आवाज रम्या का साथ एंड ये प्यारा सा गाना, आई लव द स्ट्राइक, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय देवगन, फर्ज करते हैं आप माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर्स केआर के, देयर्स करण जौहर एंड देयर्स काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
3: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
2: बिकॉज दैट्स द गेम. आपको दो लोगों को तो बचाने ही पड़ेंगे.
3: मुझे बचाने नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
2: ऐसा ही हूँ मैं.
3: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
2: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल.
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: खट खट,
5: हू देयर?
4: अगर कर,
5: अगर कर हू?
4: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे.
5: खट खट, हू देयर?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.

0: लबजी श्रीवास्तव की आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, ये खूबसूरत सा चाशनी भरा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब किसी मिठास को भी जिंदगी में घोल लिया जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back, you're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Arshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए घोलते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ एंड बस कोई तो मिठास है जो आपसे कुछ देर पहले हम सबकी जिंदगी में मैंने घोलने की कोशिश की। यार मैंने बस यही कहा आपसे कि जिस देश में हम रहते हैं क्यों ना उसके कल्चर एंड ट्रेडिशन को जरा और करीब से जानने समझने की कोशिश करें। एंड अगर फूड कल्चर की बात करें तो बस मेरा आज का सवाल आपसे यही था कि अगर मैं अरबिक डिशेज की बात करूँ तो क्या आपको कोई 3 अरबिक स्वीट्स या डेजर्ट्स के बारे में पता है? बहुत सारे रिप्लाईज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज इस वक्त मैं आप तक पहुंचा दूं।
2: Hi RJ Anshu, this is Madhulika calling. The 3 Arabic sweets that you asked were, I would say one is Umali, the other is Kunafa, and the other one that I'm familiar with is Baklava. They're all very, very yummy. Thank you.
0: All right, wonderful. Absolutely, आपने जो तीनों की तीनों मिठाइयों का नाम लिया ना, ये तीनों मेरी बेहद फेवरेट हैं, absolute favorite. चलिए अब मैंने आपसे कहा था कि अरबिक कल्चर जो है इंडियन कल्चर से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, फिर चाहे मैं इंडिया की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, फूड कल्चर हमारे यहाँ मोर एंड लेस सेम ही है, राइट? तो इनके बीच आखिर किस तरह का रिजेम्बलेंस है ये मैं आज आपके बीच पेश करती हूँ। वेल इंडिया एंड अरब अगर फूड कल्चर को देखने की कोशिश करें, खासकर इनके मिठास में एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है। कभी नाम जो है वो अलग होते हैं, कभी स्टाइल अलग होती है, लेकिन टेस्ट एंड इमोशंस जो हैं ये पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। जैसे कि अगर इंडिया के आइकॉनिक गुलाब जामुन को हम देखने की कोशिश करें जो पाकिस्तान में भी काफ़ी मशहूर है, तो भैया अरबिक वर्ल्ड का लुकाइमत बहुत ज़्यादा इससे रिजेंबल करता है। दोनों ही सॉफ्ट हैं, सिरपी हैं एंड प्योर कम्फर्ट डेजर्ट वाइब्स जो है हमारी जिंदगी में ज़रूर लेकर आते हैं। इसके साथ ही अगर हमारी टेढ़ी मेढ़ी मेरी जलेबी की मैं बात करूँ तो भैया ये मिलती है मिडिल ईस्ट की जलाबिया से, यू नो क्रिस्पी शुगरी स्पाइरल्स एंड अपने आप में दोनों का टेस्ट जो है ये काफ़ी हद तक रिजेंबल होता है। एंड अगर इस वक्त हम उमाली की बात करें जो अरब वर्ल्ड में काफ़ी मशहूर डिश है और मेरा सबसे फेवरेट है, तो उसका रिजेंबलेंस काफ़ी हद तक इंडिया के शाही टुकड़े कह लें या डबल का मीठा इससे होता है, ब्रेड मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स, एंड यू वुड सर्टनली अग्री विद दैट। एंड इसके साथ ही अगर मैं अरब वर्ल्ड के लेजेंडरी कुनाफे की बात करूँ, भाई क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड, सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड एंड चीजी गुडनेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरप्राइजिंगली अगर इंडियन इमोशन को आप देखने की कोशिश करेंगे ना तो क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस कहीं फील हो सकता है, सो दैट कैन बी विथ मालपुआ एंड रबड़ी। आई मीन दैट इज वॉट आई फील, दिस इज माई टेक ऑन दिस। वट डू यू सजेस्ट, अरबी जगत की वो कौन सी मिठाई है? लेट्स से अगर मैं बकलावा की बात करूँ तो आपको क्या लगता है बकलावा इंडिया की कौन सी मिठाई से रिजेंबल करता है? यू नो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? आई वुड वांट टू हियर योर व्यूज। 5001896, लेट्स गेट कनेक्टेड द इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल आयुष्मान खुराना की आवाज़ इन्हें अगला गाना एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
1: सर, सर मुझे बात करनी है आपसे। ऑफिस में काम मैं करता हूँ और क्रेडिट मेरा टीम लीडर ले जाता है, मैं क्या करूँ?
0: तो आपका प्रॉब्लम है कि क्रेडिट आपका टीम लीडर ले जाता है। एक काम करो, बैंक जाओ, क्रेडिट उधर भी मिलता है।

0: पललका याग्निक एंड बाबुल सुप्रियो की खूबसूरत सी आवाज़, एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। ये प्यारा सा गाना तो उस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन हम तुमको किसी बात से सतर्क रहना है। जरा इस वक्त उसकी भी बात हो जाए।
1: मिर्ची अंशु
0: Welcome back, you're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ, एंड कोई तो बात है जो इस वक्त हिदायत के तौर पे आप तक खास कर मैं पहुँचाना चाहूँगी। वेल, इस वक्त अगर कतर को देखने की कोशिश करें तो कुछ तो बदला सा है, हवा जो है वो जरी बदली सी है। वेल, अगर शाम के वक्त देखने की कोशिश करें तो अभी भी मौसम जो है काफ़ी हद तक हमारी जिंदगी में सुकून लेकर आ रहा है, लेकिन अगर दिन की बात करें भाई, हवाओं ने कुछ ऐसा रुख बदला है कि वो जो कहावत थी ना कि भैया तुम्हारे यहाँ तो ऑमलेट बिना एलपीजी के बन जाता होगा, हाँ जी आपके यहाँ तो दिक्कत किल्लत है लेकिन हमारे यहाँ जरूरत नहीं है, यही वाली हालत है।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: Weather update. Well, अगर आज के मैक्सिमम टेम्परेचर को मैं देखने की कोशिश करूँ, सो इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 38, मिनिमम इज गोइंग टू बी अराउंड 27. हवाएं जो हैं तेज गति में बिल्कुल चल रही हैं, स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर्स पर आवर, एंड ये सिलसिला आज भी कंटिन्यूड रहेगा। हैविंग सेड दैट, आई लाइक टू लेट यू ऑल नो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज ये जो हवाएं हैं ये नॉर्मल नहीं हैं जो आपके बालों को उड़ाते हुए आपके रील्स के लिए वीडियोज के लिए एक स्पेशल इफेक्ट देंगे। वो हवाएं हैं जो अगर अंदर जाएं, इनहेल हो जाएं, तो अंदर में खलबली जो है ना वो जरूर मचाएंगी। सो ऐसा ना हो, इसलिए सेफ रहें, सतर्क रहें, सिक्योर रहें, ठंडा पानी जो है वो पीते रहें, एंड हाँ यार, खासकर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अपना बेस्टेस्ट बड़ी इस वक्त आपको जरूर बताना है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्यूकम्बर्स, वाटरमेलन, मिंट, एंड वी कॉल इट बटर मिल्क छाछ। ये सारी चीजें जरूर कंज्यूम करें, घर पर इनका कुछ अच्छा बनाए तो मुझे जरूर बुलाएं। मीनवाइल टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, इट्स हॉट। बिंदी का नाम अंशु एंड वेदर अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय
3: Weather Check, brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100-0813.

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La viva la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: उसको पैरों को पीछे लगा के उसको को आगे करो।
2: हेलो, हाँ जी,
3: ये भाई साहब ये गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है आपसे।
2: कौन सी गाड़ी आपकी?
3: पैरों है, स्टीम है, एक सेकंड आप होल्ड करें।
4: अरे बेकार आ गई क्या? तो रात उठाइए वहाँ से, वो अब तक नहीं पहुँची। उसका फोन आया मेरे पास, रात उठाइए गाजियाबाद से उसने, दोनों आ गए।
3: हेलो रोहित जी, मुझे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है, 6-7 गाड़ियाँ हैं, ये बताइए क्या हिसाब है आपका इंश्योरेंस करने का?
2: बताइए कैसे बताऊँ मैं हिसाब किताब, बताओ कौन सी गाड़ी आपकी?
3: बल्कि मैं आपको पहले ये बता दूँ, मैं चेक नहीं दे पाऊंगा, मैं कैश में डील करता हूँ सारी।
2: ठीक है,
3: इसमें मेरी अभी तो आप लिखिए एक मॉडल आप लिख लो इसका। एक सेकंड, आराम प्रकार से गाजियाबाद से उठाइए, क्या मॉडल है उसका?
2: 2000।
3: यार रोहित, एक तो ये है कि ये मामला किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, मुझे सिर्फ इनका इंश्योरेंस चाहिए किसी भी तरह, और ये मेरे पास इस वक्त 27 गाड़ियां हैं, 27 गाड़ियों में आप ये सबका इंश्योरेंस कर दो, किस तरह गाड़ी इंश्योर कर दो, ताकि मैं इसको किसी भी तरह बेच दूं, बस बेच के फिर मेरा स्यापा खत्म, मैं नहीं जानता कहां की गाड़ी थी कुछ था।
2: हेलो,
3: हाँ जी, कौन बोल रहे भाई साहब?
2: अजय शर्मा।
3: अजय जी, ऐसा है मेरे पास 28 गाड़ियां हैं इस वक्त।
2: अच्छा, आपकी अपनी है?
3: अब उसको आपको क्या लेना है यार, मेरी अपनी
2: नहीं, उसी,
3: मैं आपको अच्छा। बताता हूँ, 3 गाड़ियां गाजियाबाद से उठाई हैं, 3 गाड़ी नोएडा से उठाई हैं, बाकी सारी दिल्ली की हैं।
2: चोरी की है क्या?
3: हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।
2: पहले मुझे देखना पड़ेगा आप कैसी बातें कर रहे हैं।
3: नहीं तो वो देखने क्या आप कर दो, आप मैं
2: आप अपना सेल नंबर दो मुझे।
3: ये सेल नंबर क्यों मांग रहे हो मेरा?
2: बात करूंगा ना आपसे।
3: ये आप अपने तक ही रखना भाई।
2: अरे सर, ऐसा काम नहीं है मेरा ना।
3: आप नंबर लिख लेना, लेकिन ये जितनी जल्दी हो सकता है निकाल दो, एक सेकंड रुके।
4: अरे तो ना बिक रही तो गाड़ी को काट देना, उसके पार्ट्स बेच दे।
3: हाँ जी भाई, तो आप ये कर दोगे ना पूरे?
2: शाम को बताता
3: नहीं, आप वैसे कर दोगे ना पूरे?
2: क्या कर रहा हूँ, शाम को फोन करके बताऊंगा।
3: अजय जी, ऐसा है ये जितनी गाड़ियां है ना, ये कोई गाड़ी नहीं खरी। अजय, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक कर रहा था आपका मुर्गा।
2: तो मैं आपको देखना चाह रहा था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: यार बजट ही नहीं बन रहा है, प्राइसेस देखिए, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
7: मैंने बोला था ना, मी 12th का वेट कर।
6: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
7: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है, 12th to 19th में। इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
6: किलर ऑफर्स। मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
7: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
8: हाउस ऑफ जोश,
9: हाय सर,
8: हाउस ऑफ जोश,
9: हाय सर।
10: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: रोहित चौहान की खूबसूरत सी आवाज़, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। वैसे अगर पीने की बात करूँ तो भाई जोरो की प्यास जो है मौसम को देखते हुए मुझे लग रही है।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to me, Team Mirchi, and this is RJ Anshu with you. आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाने एक बार फिर से आ चुकी हूँ। अंशुलि जी, मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे ड्रिंक्स के बारे में आज मोहित चौहान की खूबसूरत सी आवाज़, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़। वैसे अगर पीने की बात करूँ तो भाई जोरो की प्यास जो है मौसम को देखते हुए मुझे लग रही है।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: Hey, welcome back. You're listening to me, Team Mirchi, and this is RJ Anshu with you. आपकी जिंदगी में मिठास के साथ

बहुत ही ज्यादा कारगर है। देखिए बचपन से ना हमने एक ड्रिंक के बारे में तो जरूर सुना है एंड मुझे लगता है कि चाहे गुजरात की बात करें या मारवाड़ की बात करें तो हमारे घर में ये पेटेंट होती है एंड हम इसे कहते हैं छास यानी कि बटर मिल्क। हालांकि ये हर जगह प्रेवलेंट है लेकिन बेसिकली इसका जो ओरिजिन है ना ये गुजरात से ही हुआ है। तो जिन्हें नहीं पता कि छास क्या होती है और बटर मिल्क क्या है, भैया कुछ नहीं करना है, अच्छा खासा दही को लेना है, उसमें जरा पानी डालना है बस, यानी कि उसको अच्छे से घोटना है, जरा सा नमक डाल दें एंड साथ में जरा सा जीरा पाउडर डाल दें एंड बिलीव मी गर्मी के दिनों में This could work as a super electrolyte. Second cheese, nariyal pani, fresh coconut water, it could be of great help. Third, one of my most favorite fruits and I'm talking about watermelon. Kuch karo na karo, lekin watermelon kha lo ya to uska juice jo hai wo zarur piyo. Ab, ek main ek aisi recipe aaj aapko batati hu jo meri dadi ke nuskhe se nikli hui hai. Agar hum gond ki baat kare, edible gum hum jise kehte hain, ye mana jata hai ki thand ke dino mein na iske laddu jo hai ye kafi faydemand hote hain. Lekin kya aapko pata hai agar main gond ki baat karu, gond katire ki baat karu, to garmi ke dino mein bhi इसका खास कंजम्पशन होता है जो आपके शरीर से गर्मी को कम करने में बहुत मदद कर सकता है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा चम्मच गोंद लेना है, रात भर इसको पानी में भिगो देना है। अब इस भिगोए हुए गोंद को सुबह पानी के साथ नमक डालो, नहीं तो जरा सी मिश्री डालो, आपको जो पसंद है एंड बस इसे फटाफट से कंज्यूम कर लो। दिस इज मैजिकल एंड दिस टेस्ट सो डिलिशियस एंड लग रहा है कि अंशु गोंद लाए कहाँ, भैया हड्डी तो तुम्हारी मजबूत होगी, मजबूत बनेगी लेकिन उसके लिए जरा हड्डी होगा ना, इस्तेमाल करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर आप सूख वाकिफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का गोंद जो है ज़रूर मिलता है। कतर के बहुत सारे सुपरमार्केट हाइपर मार्केट्स में भी है लेकिन हाँ वहाँ पे गारंटी मिलना ही मिलना है। जाइए जी, अच्छी खासी ड्रिंक्स जो है घर पे बनाइए। बाकी कुछ मोहब्बत का शरबत वगैरह घर पे बन रहा है तो हमें बुलाओ यार, अच्छे लोग एंटरटेन करेंगे आप। 5000186 लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, मीनवाइल अरमान मलिक के आवाज़, नीति मोहन का साथ एन यग लगाना। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Well, Arijit Singh ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is from the film When Harry Met Sally. Yaar bahut hi pyara sa gaana hai Anushka Sharma and Shahrukh Khan ki kya gazab chemistry. Matlab Shahrukh kaise versatile actor hain jo har age criteria ki actress ke saath na kamaal lagte hain. Waise koi aur bhi hain jo ye role jo hai kafi achhi tarah se nibha paate hain.
1: Mirchi Anshu
0: नहीं गौरव, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि 50 साल की उम्र में भी तुम ये 20 साल वाला चार्म जो है कहाँ से लेके आते हो?
2: जब मेरे सामने कोई 60 साल का खड़ा हो जाए तो मेरे अंदर पहले ही वो चार्म आ जाता है, मुझे लगता है उससे यंग फील कराना है। जोक्स अपार्ट, आप अगर जिंदगी को हर दिन एक नया चैलेंज मान के आगे बढ़ते हैं ना कि आज भी एक नया दिन है और आप उम्र में आगे नहीं गए तो ये फिर आप कर सकते हैं। आजकल वो देखो ना, एक मैसेज है बड़ा मीम, ये 80s 90s में पैदा हुए लोग बड़े ही अजीब सिनेरियो में चल रहे हैं। ये उम्र के 40वें पड़ाव पर है पर ये मानने को तैयार नहीं है और हम भी मानने को तैयार नहीं है कि हम इतना आगे आ गए हैं। पर सभी मिलेनियल्स ये ध्यान दें कि धीरे धीरे कुछ सालों में आप हाफ सेंचुरी लगा रहे होंगे तो भी आपका दिल ऐसे ही बच्चा होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर का बच्चा हर दिन कुछ सीखता रहेगा तो हम इस दुनिया में हर एज ग्रुप के साथ जेल कर पाएंगे।
0: वैसे गौरव ने बाजे काफी काम की कही मेरी उम्र के और कुछ इशारा करने की कोशिश की जो कि पूरी तरह से गलत और बहुत ही निहायती बेहुदा ये बात उन्होंने इस वक्त कही है, लेकिन गौरव जो है खुद एक मिलेनियल है। अच्छा गौरव, सुने मुझे एक बात बताएं, चूंकि बचपन की बात हो रही है यार, मुझे आपसे एक बात जानी है, बचपन की वो कौन सी ऐसी कोई याद है जो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, जो आज भी आपने महफूज रखी है अपने पास?
2: बहुत सारी यादें हैं, मतलब मोमेंट्स लाइफ में बहुत बनते हैं, पर एक याद मैं हमेशा रखता हूँ, वो ये कि मैंने जब ये मई जून का टाइम होता था, तुम्हें याद होगा इस टाइम हम लोग के टाइम पर रिजल्ट्स अब आते थे मई में ही, मुझे याद है मैं एग्जाम के देने के बाद से ही बहुत खेलता था, घूमता था और बोलता था बहुत अच्छा पेपर गया है, और मम्मी रोज बोलती थी रिजल्ट आने दे, तो ना मैं रिजल्ट आने के 15 दिन पहले तैयारियां करता था, बेल्ट मारता था खुद को और ना पीठ पे ऐसे एकदम बेल्ट रबड़ के जूते ताकि मेरी पीठ मुंह मजबूत रहे। मैं अपने आप को थप्पड़ मारने वाला शायद दुनिया में इकलौता इंसान होगा, सबसे ज्यादा मैं अपने आप को प्रिपेयर करता था। ये जो प्रिपरेशन है मैं एग्जाम में नहीं करता था, नंबर आने के बाद अपनी चमड़ी को मजबूत करने में करता
0: था। गौरव ने इतनी बड़ी अपनी पोल खोली हुई ना गौरव, बस बचपन के दिन जो है आज तुमको हम फिर याद दिलाएंगे, काम तुम अपने हाथ से नहीं करोगे, हम तुम्हारे लिए।
2: नहीं नहीं, मेरे रिजल्ट नहीं आने वाले,
0: आज बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा गौरव, बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो गौरव के साथ बहुत कुछ अभी काम करना है, आप इशारा तो है समझ गए होंगे क्या कुछ हम करने वाले। जावेद अली की आवाज, इरफान अशरफ का साथ एंड हकीकत जो है आज बनने वाली, ये गाना भी जो है आप जरूर सुनिए। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
5: कौन है?
6: स्टेन।
5: स्टेन कौन?
6: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
7: खट खट, who that?
8: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Well, KK ki khoobsurat si awaaz and what a lovely track it is from the film Gangster featuring Imran Hashmi and saath Kangana Ranaut. And वैसे अगर इस गाने की बात करूँ और इस फिल्म से बात करूँ तो एक बहुत ही खूबसूरत सी याद है जो जुड़ी हुई है. चलिए आज आपके बीच ना मैं शेयर करती हूँ.
1: मिर्ची अंशु
0: Hey, welcome back. You're listening to me, Team Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. एंड कोई तो मेरा एक ऐसा सीक्रेट है जो आज मैं रिवील करने जा रही हूँ. नहीं, ऐसी बातें ना बाहर निकालने के पहले मुझे डर लगा करता था कि घर वाले क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, अरे अब तो जिंदगी में सेटल हो चुके हैं, क्या टेंशन. राइट यू. तो ये जो फिल्म रिलीज हुई थी साल 2006 में, आई क्लियरली रिमेंबर आई वॉज इन ग्रेट टेंथ. मैं टेंथ में थी. अब मेरी उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश हो ना, तुम जरा बाद में करना, पहले कहानी सुनो. अब उस समय ये हुआ था, लाइफ का वो फेज चल रहा था जब पहली बार आपको किसी से क्रश होता है या किसी और को आपसे क्रश होता है. बहुत सारे हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में प्ले कर रहे होते हैं. एंड आई रिमेंबर मेरे क्लास में एक बंदा हुआ करता था जिसने बड़ी हिम्मत से ये गाना जो है मुझे डेडिकेट किया था. एंड आई वॉज अ बिग टाइम स्टूडियस पर्सन, अच्छी खासी पढ़ने में थी मैं. हाँ, टेंथ में मुझे अच्छे से याद है, मैंने स्टेट टॉप भी मारा है. हाँ, शाबाशी है. राइट. अब हुआ कुछ इस तरह कि अब क्रश जो है कहीं ना कहीं हमको भी था, लेकिन हम ठहरे लड़की. एक बार मैं एक्सेप्ट कर ले तो बात ही क्या, वो पूरा एटीट्यूड दिखाना, नखरे दिखाना, नहीं मैं तो पढ़ने लिखने वाली लड़की हूँ, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं रखती. और मैंने ऐसी कुछ हरकतें की. लेकिन हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब एक सीडी में रिकॉर्ड करके उसने ये गाना मुझे भेजा था, भाई मैंने लूप में कम से कम ये गाना जो है ना 20 बार सुना था. एंड हर एक वर्ड को मैं इतने गौर से ध्यान से सुन रही थी, जस्ट ट्राइंग टू फील इट. एंड आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मासूम वाला प्यार हुआ करता था, यू नो, वो हमारे स्कूल टाइम का क्रश नहीं, कॉलेज की भी मैं बात नहीं करूँगी, मासूम अगर की बात करें, प्यार की बात करें, मोहब्बत की बात करें, ये सब वर्ड्स तो काफी हैवी हैं यार. वो मासूमियत ही है जो उस समय होती है ना, हाय, उससे ज्यादा खूबसूरत जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता. एंड यू नो व्हाट, आई ट्रूली बिलीव इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच फेज यू आर इन ऑफ योर लाइफ, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फील दैट फीलिंग ऑफ लव. यू नो, जिंदगी में प्यार होना बहुत जरूरी है, खुद से होना, आपके आसपास के लोगों से होना, आप जो काम करते हैं आपके काम से आपको प्यार होना, नेचर से प्यार होना, दुनिया से प्यार होना. एंड पता है क्या, बाकी सारा मोटिवेशन इंस्पिरेशन तो बाद में आता है. जो भी चीज़ है, जैसा भी है, अगर उससे प्यार है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो सब कुछ अच्छा होना है. फिर चाहे आपका काम हो, वो एक रिश्ता हो, या दुनिया का कोई सामान या कोई वस्तु, चीज ही क्यों नहीं. एंड अगर आपको लगता है कि इस बात में है दम, भाई साहब एक अप्लॉड या मुझे थैंक यू मैसेज तो भेज दें. 5000186 5000186. आई एम ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. अजी, जाने से पहले एक पावर पैक गाना आपको सुनाते जाऊं. मेरा ड्रामा होता है खत्म, स्वीटी का ड्रामा होता है शुरू. इंजॉय. बिंदी का नाम अंशु. मसलामा हबीबी. Mwah!

0: क्या आपको रोज तैयार होने से दिक्कत है? तो फिर सुनो मेरी बात।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. वैसे हमें लगता है कि हम दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अब अगर इस रीजन को बदल दो, कॉज हम दुनिया के लिए तैयार ना होकर जब खुद के लिए तैयार होंगे ना, तो दैट वुड मीन कि हम कॉम्प्लीमेंट्स के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे मूड को अफेक्ट करता है। सोचो, इट्स अ ग्लूमी डे, लेकिन आपने तैयार होने में 100% दिया है। यू एंटर योर वर्क प्लेस और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट से नवाजने लग जाते हैं। Gloomy day all of a sudden turns into a bloomy day, और आप तारीफें सुन सुनकर फूल की तरह खिल उठते हो। तो हाँ, तैयार होकर घर से बाहर निकलना इज नॉट फॉर पब्लिक, ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है यार। बस रीजन बदल दो और अपने लिए तैयार होना शुरू कर दो, तो फिर आपको ये जबरदस्ती का काम नहीं लगेगा। यूँ नहीं लगेगा कि यार डेकोरम है तो फॉलो करना है। नहीं यार, तैयार हो तो खुद के लिए, अपनी तारीफों के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। ये ना वाकई में आपके दिन की काया पलट सकता है। और अगर आप वो इंसान हो जो डेकोरम को फॉलो ना भी करते हुए तैयार होकर ना भी जाते हो, तो ये ट्राई करके देखो। जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाएंगे और आपका दिन जो है वो बेहतर होता चला जाएगा ना, तो आप ही के लिए फायदेमंद रहेगा। चलो अभी फिलहाल के लिए आपको और मेरा दोनों का फायदा देखते हैं, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे कह देती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milchi, burga.
1: हेलो
2: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
1: गुड इवनिंग
2: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
1: ओके
2: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट तो सर, आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे. और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा वेट सर, वेट.
1: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है
2: सर? यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
1: डर जाएगी.
2: गुड सर, वेरी गुड सर.
1: सर ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
2: सर. आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
1: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
2: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
1: पूछो यार.
2: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
1: पूरे 100.
2: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
1: जेल में जाना पड़ेगा.
2: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
1: समझा नहीं मैं.
2: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
4: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
5: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
6: कम है के?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
8: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिल्लू को बार बार बोलना पसंद नहीं था, इसी वजह से बिल्लू बार बार में से सिर्फ बिल्लू ही रह गया।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म originally was supposed to be titled बिल्लू बाबर, लेकिन फिर एक प्रोटेस्ट हुआ जिसके चलते ये डिसाइड हुआ कि यार बिल्लू अब सिर्फ बिल्लू ही रहेगा। एंड ये फिल्म एक्चुअली एक रीमेक की रीमेक है, कमाल की बात है नहीं? सो ये फिल्म बनी थी मलयालम में, जिसका नाम था कढ़ा पारायुम्बुल। अब मुझे नहीं पता कि इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है, लेकिन एक्चुअली ये फिल्म फिर तमिल में बनी, कोसेलन नाम की एक मूवी बनी थी जिसमें कि रजनीकांत द थलाइवा उन्होंने काम किया था, एंड देन ये फिल्म बनी हिंदी में बिल्लू के नाम से। एंड पता है क्या, इस फिल्म को ऑथेंटिक लुक देने के लिए इसका शूट जो है, जो सेट बना था, वो शूटिंग करने के लिए किसी मुंबई के फिल्म सिटी में या हैदराबाद के किसी फिल्म सिटी में नहीं बना था। इट वॉज एक्चुअली अ सेट कंस्ट्रक्टेड इन अ विलेज जो तमिलनाडु में था, उसका नाम था पोल्लाची। सो दैट बैकड्रॉप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इस फिल्म का, वो एकदम रस्टिक चार्म देता हुआ निकले। एंड वेल, इट डिड जस्टिस टू द फिल्म। हाँ, मगर इस फिल्म को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा था कि यार इस फिल्म में शाहरुख खान के होते हुए इरफान खान को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? उसके पीछे भी एक वजह है जिसको मैं बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद इरशाद

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
2: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
4: खूब मिलेगा, मिलेगा।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिल्लू मूवी के लिए आपको पता है इरफान खान को किसने ढूंढा था? None other than शाहरुख खान ने.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, it was शाहरुख खान जिन्होंने की नेमसेक देखने के बाद ये डिसाइड किया and he believed in इरफान खान कि यार बिल्लू की सिंसियरिटी और ह्यूमिलिटी वाला जो इफेक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इरफान खान की परफॉर्मेंस से ही निकल के आ सकता है. And well, he was correct. लेकिन जब हम बात करें इरफान खान के इस फिल्म में छाने की, नॉट शाहरुख खान, आई मीन शाहरुख खान ब्रॉट इरफान खान, लेकिन फिर भी शाहरुख खान ने फुटेज नहीं खाई इस फिल्म में, बिकॉज शाहरुख खान वॉज द पर्सन जिन्होंने बिल्लू को एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से प्रमोट किया एंड ही डिसाइडेड कि ही शुड नॉट बी प्लेइंग इन द फ्रंट फुट, इट शुड बी इरफान खान जो कि इस फिल्म की लाइमलाइट लेकर जाने वाले इंसान है बिकॉज ये फिल्म उनके कैरेक्टर पर बेस्ड है. एंड सो शाहरुख खान ने अपने रोल के ऊपर फोकस करने के बजाय इस फिल्म को ऐसे प्रमोट किया कि वो बिल्लू की फिल्म है, सो दैट इरफान खान को स्पॉटलाइट मिले इवन इन इंटरव्यूज एंड प्रमोशंस. और ये दोस्ती यहीं तक नहीं थी, आई मीन आगे जाकर भी देयर वाज अ टाइम व्हेन इरफान खान की तबीयत खराब हुई थी एंड ही वाज सपोज्ड टू बी ट्रीटेड इन लंदन एंड इट वाज शाहरुख खान हु ऑफर्ड हिज अपार्टमेंट इन लंदन टू इरफान खान सो दैट वो वहां रहकर अपना इलाज करवा पाए. सही कहा है किसी ने, अपनी पोजीशन से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, दिल बड़ा कर लेता है ना तो वो नजरों में अपने आप ही बड़ा हो जाता है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
3: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
4: उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
3: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
3: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
4: मैं मुझे नहीं पता।
3: हम साथ
4: कौन
3: साथ
4: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
3: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
4: ये भाई बहन थे। वेलकम।
2: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: खट खट,
6: हू देयर?
5: बनता
6: बनता हूँ।
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खट खट, हू देयर?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिल्लू फिल्म के गाने देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इट माइट हैव बीन वेरी इजी टू गेट दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, यू नो ऑल दीज टॉप एक्ट्रेसेस एक ही फिल्म में इतने सारे गाने करने के लिए. लेकिन बॉस, जो दिखता है वैसा होता नहीं है.
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड पर्दे के पीछे का सच तो ये है कि करीना, दीपिका, प्रियंका, इन सब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के स्केड्यूल्स को कोऑर्डिनेट करते करते भाई पसीने छूट गए थे क्रू के. मतलब ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान ने उनको अप्रोच किया होगा या शाहरुख खान है इस फिल्म के अंदर तो ईजी रहा होगा उनका इस फिल्म के लिए गानों में काम करना. लेकिन बात कुछ और ही थी भाई. बिकॉज ऑफकोर्स जब ये बड़ी एक्ट्रेसेस हैं तो इनके पास काम भी बहुत था, और जब काम बहुत था तो इनके स्केड्यूल्स और लॉजिस्टिक्स को पूरा का पूरा मैनेज करना वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर द टीम. और इनके पैक्ड कैलेंडर्स, ओ माय गॉड, उसके तो क्या ही कहने. किसी की कब डेट मिलती थी और किसी की कब डेट मिलती थी. और फिर इस फिल्म की शूटिंग भी तो चलनी थी अपार्ट फ्रॉम द गानाज. तो फाइनली इस चैलेंज को फेस करते करते इन तीनों टॉप एक्ट्रेसेस के गाने इस फिल्म के लिए शूट हो ही गए. एंड इवेंचुअली वो हमें पसंद भी बहुत आए. कमिंग टू लारा दत्ता, हु इज द लीड एक्ट्रेस इन दिस फिल्म, वेल, उनके और इरफान खान के इमोशनल सीन्स की अगर बात की जाए ना, तो आपको पता है उनके काफी सारे ऐसे सीन्स हैं विच वर एक्चुअली इम्प्रोवाइज्ड, सो दैट ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फील निकल कर आए इन दोनों के बीच के सीन्स का. ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट, लारा दत्ता उस जमाने में जिस किस्म की एक्टर थी, किसी ने नहीं सोचा था कि वो बिल्लू में एक गांव की गोरी का रोल कर लेंगी. एंड माइंड यू, काम तो उन्होंने डिसेंट कर ही लिया था. एंड आई एम श्योर लारा के लिए दिस माइट हैव बीन एन एक्टिंग क्लास मोर देन अ फिल्म. नहीं क्या? यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Motor se bol rahe hain?
1: हाँ जी
2: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
1: ठीक है सर,
2: 5 सेकंड जल्दी।
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: प्लीज जल्दी बता दो।
1: सर ये कोई कस्टमर के लाए हेलो
2: हेलो
1: बात की
2: होल्ड नहीं कर सकता। हेलो
4: हाँ जी सर,
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो। सर
2: एक सेकंड रुकिए
4: सर, साइड में है, लेफ्ट साइड में।
2: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का था, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
4: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
2: इग्निशन एक सेकंड रुकिए, ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
4: हाँ जी
2: एक सेकंड। सर कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: ऐसे मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा है, एक सेकंड कुछ और। ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी।
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
4: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
2: एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए।
4: क्या हो गया?
2: आए गाड़ी ठुक गई। गाड़ी ठुक गई।
3: मैडम क्या नाम है आपका?
1: दिव्या।
3: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
1: Oh, I was so dead, I thought, what happened?
5: मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
6: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and The Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
7: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
5: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: सोहम की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो. इट्स सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक यार. और पता है ये गाना मुझे उन लोगों के ऊपर बड़ा सूटेबल लगता है जो जिंदगी की भागदौड़ में इतने बिजी रहे कि कभी मोहब्बत करने का मौका ही नहीं मिला. एंड फाइनली उनका दिल उनसे कह ही रहा है कि भाई तू भी ख्वाब सजा ले, तू भी जी ले जरा, और मोहब्बत अब तू कर ही ले. वाह क्या गाना लिखा है सोच समझ के यार.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And well, सोच समझ के तो मैंने भी एक कदम उठाया है. That is, मान ना मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर रोज की तरह दो गाने मैं आपके लिए उठाती हूँ, उनकी धुनों को लगाती हूँ, मिक्स करके आपको सुनाती हूँ, और फिर आपको बताना होता है कि ये दो गाने एक्चुअली है कौन से. हाँ, आपके लिए हिंट बस इतनी होती है कि ये गाने या तो 90s के हैं या अर्ली 2000 के हैं, यानी कि हम मिलेनियल वाले सॉन्ग्स ही हैं. जब हम पल बढ़ रहे थे उस जमाने के ही गाने हैं, तो पहचानना थोड़ा आसान हो जाता है. तो फिर बस जी, आपका ये जो इंतजार वाला वेट है इसको ना बढ़ाते हुए आगे मैं आपको गाने सुना देती हूँ. धुनों को पहचानो. एंड हियर वी गो.

ओकी डोकी, काम बस इतना करना है, डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, व्हाट आर दीज टू सॉन्ग्स, लिखकर मुझे भेज दो. एंड स्टे ट्यून्ड रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Our business is our business, none of your business.
6: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
7: entertainment. Qatar का number one radio station.
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: किशन कन्हैया, ये फिल्म तो हम सभी ने देखी है भैया DD1 पर। अनिल कपूर का जब रोल रिवर्सल होता है और जब चालू वाले अनिल कपूर जो हैं वो सिंपल वाले अनिल कपूर की जगह ले लेते हैं और रिवेंज लेते हैं ना, ओए होए, असल मूवी तो वहीं से ही शुरू हुई थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and well, किशन कन्हैया का ये गाना हम कैसे भूल सकते हैं? This was a super duper hit हमारे दिल में आ। हम तो आज भी इस गाने को काफी गुनगुनाते हैं अगर किसी को देख लेते हैं सूट बूट पहने हुए तो।
3: सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को।
1: And well, the news is कि ये गाना original नहीं है बाबू मशाय। Well, actually, the thing is कि there's this English गाना Giacomo.
4: Spy boy, met your spy boy, sitting by the bayou.
1: जो कि 1953 में बनाया गया था by James Crawford. And this गाना was also known as Sugar Boy. And boy oh boy, किशन कन्हैया का ये गाना इस English गाने से cut copy paste है या फिर inspired है, जो कहना है कह लो, but जो भी कहो वो तो आ चुका है Thugs of Filmistan की category में। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: लुटे कोई बातों में, देखे कोई प्यार से।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम, बस तुम।

0: पास आते हैं।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम।
1: बस तुम?
2: ओफो।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम।
1: बस तुम?
2: ओफो।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल।
4: Only on मिर्ची, it's hot।
5: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से हम अज्यूमिंग कि आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
6: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
5: शाहरुख खान इतना चार्म कहां से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल।
4: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: खटखट,
2: कौन है?
7: दवे।
2: दवे कौन?
7: द वे यू लव मी। आई हाय, मर जावा।
2: खटखट, हु दैट?
8: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
1: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन।
4: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: यार आज के टाइम पर भी से ना कि लेस इज मोर, बचपन में भी तो इसी पॉलिसी के साथ चला करते थे हम, जहां बड़ों ने हमें हमेशा लेस इज मोर की पटरी पर चलाया है।
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम millennials, we've grown up with the idea कि जितना है यही है, इसी में काम चलाओ। स्कूल बैग अगर मिड ईयर में फट जाया करता था ना, तो मम्मा कहा करती थी कि नया बैग तो नेक्स्ट ईयर ही लेंगे, अभी इसे सिलवा कर फिक्स करवा लेते हैं और इसी से ही काम चलाओ। जूते हमारे कितनी बार सोल से जुदा हो जाते थे और हर बार मोची से फिक्स होने के लिए जाया करते थे। हम वो जनरेशन है जहां हमें खुद को कंट्रोल करना सिखाया गया है कि अगर घर में बिस्किट्स हैं, नमकीन है, तो वो तभी खाने हैं जब गेस्ट आएंगे। ऐसे मंचिंग वंचिंग के लिए नहीं चलेगा ये सारा कुछ। हाँ, प्रॉपर खाना खाओ। और अगर घर में चॉकलेट्स आया करती थी ना, तो ये बात भी फिक्स थी कि एक अकेला इंसान इसे खत्म नहीं करेगा, सबके हिस्से होंगे, बिकॉज सब कुछ लिमिट्स में ही घर में आया करता था। अनलाइक टूडे, जहाँ एवरीथिंग इज सो इजिली एक्सेसिबल कि किसी चीज को लेकर एक्साइटमेंट इस वजह से ही तो नहीं होता है कि अगर खत्म हो गई तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, बिग डील। हम क्लियरली उस टाइम में जिए हैं यार, जहाँ लेस वॉज एक्चुअली मोर। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: La bala.
0: Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
2: कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
7: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
8: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear Cooler,
2: यादों को चिट्ठी।
1: जैसे ही गर्मी ने दस्तक दी ना, तो तुम्हारी याद अचानक दिल के कोने में ताजा हवा की तरह गूंज उठी। न जाने कितनी दोपहरियां और कितनी रातें हमने तुम्हारी हवा में काटी है। जब पूरा घर तपरा होता था ना गर्मियों की छुट्टियों में, तब तुम ही तो थे जो अपनी ठंडी सांसों से हमें राहत देते थे। तुम्हारी वो घर घर की आवाज अब शोर नहीं, अब तो वो सुकून बन गई है। तुम्हारी टंकी में पानी भरना ना किसी रस्म की तरह लगता था, और जब पानी खत्म हो जाता था तो पूरा घर जैसे बेचैन हो उठता। और तब तो पाइप से भी हम पानी नहीं भरा करते थे तुम्हारे अंदर, बाल्टियां भर भर के लाई जाती थी और तुम्हारे अंदर ढोली जाती थी। और ये काम जिसको दिया जाता था वो इंसान बेचारा परेशान ही रहा करता था। कई बार तो तुम्हारे सामने बैठकर ठंडी हवा खाते हुए हमने कितनी बातें करी हैं। आमरस पिया, टीवी देखा, अब सब कुछ जैसे ख्वाब सा लगता है जो कभी हमने देखा था अपने बचपन के दिनों में। कितनी बार तो तुम्हारे सामने बैठकर हम आवाजें निकाला करते थे, लेकिन तुम्हारे सामने बैठकर आवाजें निकालने के बाद समझ में आया कि टेबल फैन तुमसे ज्यादा आवाज अच्छी निकालता है, लेकिन हवा तुम ज्यादा ताजा देते हो। आजकल वैसे एसी ने तुम्हारी जगह ले तो ली है, पर उसमें वो अपनापन नहीं है। वो खस की महक, वो नमी, वो खिड़की से आती हुई तुम्हारी पुरानी आवाज, सब कुछ आज भी सोचती हो ना तो दिल एकदम खुश सा हो जाता है। घर में मुश्किल से दो कूलर हुआ करते थे, जहाँ तुम होते थे वहाँ सब होते थे, और जहाँ सब होते थे वहाँ खूब बातें होती थी। अब तो हर कमरे में एक एसी लगा हुआ है, सब अपने अपने कमरों में चुपचाप जाके सो जाते हैं। वो इकट्ठा होकर साथ बिस्तर लगाकर सोने का फन जो है ना, वो खत्म सा हो गया है। तुम तो ऐसे थे जैसे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग, जो जब तक थे तब तक सब साथ थे, जब चले गए तो सब अपने अपने हो गए। खैर, तुम्हारी याद जो है वो तो आज भी दिल में बहुत ताजा है। और इन गर्मियों में तुम्हें और तुम्हारी उस आवाज को याद करती हुई मैं सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, फिनलैंड में सरकार अपने नागरिकों को 7 दिन की ट्रिप ऑफर कर रही है ताकि वो विदेश में जाकर हैप्पीनेस ढूंढ सके।
3: भाई इसका नाम फिनलैंड से मुझे लगता है कि फनलैंड कर ही देना चाहिए। और वहाँ पे देखो सरकार तक मान गई छुट्टी के लिए, और यहाँ मेरे कंपनी का सर नहीं मान पा रहा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म मेरे यार की शादी है इज कैसेट के साइड ए का दूसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: स्कूल में भले ही हम कभी भी टाइम पे ना जागे हो, लेकिन हमारे अरमान बड़े होते होते बहुत टाइम से जाग जाते हैं। जहाँ कोई सही इंसान दिख नहीं जाता ना, जागे जागे अरमा हो जाता है। एंड दैट इज हाउ ये गाना निकल के आता है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम दिस फिल्म कि यार मुझे मतलब मूवी देखते देखते काफी नींद आ रही थी। ऑल्सो बिकॉज मैंने एक दवाई ली थी, मुझे जुकाम हो गया था तो मैं सो गई थी बीच में, लेकिन इस गाने के दौरान मैं जरूर उठी थी यार। इट्स सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक, द कॉम्पोजिशन, द पिक्चराइजेशन, एंड ऑफकोर्स जिमी शेरगिल की तो मैं फैन थी उस टाइम पर, क्योंकि वो मुझे शाहरुख खान जैसे लगा करते थे, इस वजह से मैं उन्हें बहुत पसंद किया करती थी। तो ये गाना जो था ना, इट वॉज अ पैकेज डील फॉर मी एट दैट टाइम। लेकिन इस गाने की ना एक बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन है जो एक्चुअली इज ट्रू। अगर आप मोहब्बत में पढ़े तो ये आपके साथ भी हुआ होगा। बताती हूँ आपको कौन सी लाइन है। कहते हैं कि चुप रहना चाहा था, रह ना सके, फिर भी जो कहना था कह ना सके। ये बात सच है। जब आप किसी से मोहब्बत में होते हो और जब आप उस इंसान से मिलते हो तो इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है ना कि आप बस ब्लैबर कर रहे होते हो, ना जाने कितनी सारी चीजों के बारे में आप सिर्फ बात किए जा रहे होते हो। एंड देन घर आने के बाद आपको रियलाइज होता है कि यार वो जो सारी चीजें मैं सोच के गई थी कि यार ये बोलूंगी उससे, वो बोलूंगी उससे, यू नो आई वॉन्टेड टू बी अ बिट रोमांटिक एंड आई वॉन्टेड टू से समथिंग नाइस टू हिम, वो तो मैं कह ही नहीं पाई। ये सच है, ऐसा होता है। पता नहीं ऐसा क्या होता है यार इस मोहब्बत में कि जब आपको होती है और जब वो इंसान सामने होता है तो आपसे बोला नहीं जाता। दुनिया की सारी तबाही आप बोल दोगे लेकिन अपने दिल की बात नहीं बोल पाओगे। और जब अकेले में हो तो फिर उस इंसान से बैठ के बातें कर रहे होते हो जबकि वो आपके सामने भी नहीं होता। धक, मोहब्बत भी क्या चीज है, नहीं क्या। चलो जी, जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ। आप एंजॉय करिए इस ट्रैक को एंड हम है रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लेकिन यहाँ के अलावा मैं आपको मिल जाऊंगी और माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Take care of yourself and stay tuned to Mirchi, cause it's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अमिताभ बच्चन जी, क्या आपके ग्रैंड किड्स आपके पास में आके कहते हैं कि हमें ये वाली गेम खिलाओ या ये वाली गेम सिखाओ?
3: मैं कहता हूँ उनसे कि बल्कि हमको सिखाओ, क्योंकि हमें तो आता नहीं है वो जो खेलते हैं, और जिस गति से वो लोग खेलते हैं हम लोग उसको कीप अप नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभार उनके साथ, जैसे ये फुटबॉल का मैच हो तो आजकल फुटबॉल का गेम भी चल पड़ा है, उसमें खेलते हैं, इस तरह के खेल खेलते हैं।
2: क्या आपके ग्रैंड किड्स को अमिताभ बच्चन जी कोई आइडिया है कि वो मुकाबला किससे कर रहे हैं? अजूबा से, शहंशाह से, सरकार से, इन शॉर्ट हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: ईशांत।
5: ईशांत कौन?
4: ईशांत गदाधारी भीम ईशांत।
5: खट खट, हू दैट?
6: ओनली ऑन 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची बताओ सवाल क्या है?
0: So I recently met a girl through arranged marriage setup. You know she is good, but she earns way more than me. I feel there is a problem. क्या करूं?
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: मैं गर्मी फील कर रहा अपनी कार में बैठा हुआ। भाई गर्मी फील करने की जरूरत नहीं पड़ती है कतर में। आपकी कार अगर शेडेड पार्किंग में नहीं है तो बाहर के टेम्परेचर से ही वो फील करा देती है कि कितनी गर्मी है। 4:03 होने को आ रहे
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: चलिए जी मस्त फॉलो गौरव आ गया लेके शाम शानदार में शानदार बातें। अब आपको बताते हैं इन सब के बीच हम बात करेंगे डेप्यूटी एमिर के उस मीटिंग की जो कि क्यूयू बोर्ड ऑफ रेजेंट्स के साथ हुई है। इसके अलावा किस तरह से पीएचसीसी ने कहा है कि इस विंडी कंडीशन में हमें बहुत चीजों का ख्याल रखना है। कतर एयरवेज वेनेजुएला से क्या शुरुआत करने जा रहा है। अशगल ने कहां की सड़कें कंप्लीट कर दी है। वन गल्फ वन हार्ट जीसीसी के गेम्स के शुरुआत में क्या क्या हुआ है ये सब कुछ आपको पता लगेगा अगर आप अगले 4 घंटे अपना कान टिकाए देंगे वॉल्यूम बढ़ाए देंगे करक के साथ मस्मौल और गौरव की गर्मा गर्म बातें सुनेंगे तो आपको सब पता लगेगा। आ जाइए हमारे साथ गर्मी में थोड़ी और गर्मी बढ़ाते हैं मिर्ची का वॉल्यूम बढ़ाई के मिर्ची सुनते हैं। इट्स हॉट
1: मिर्ची फ्रेश माल
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: When you're hungry for real flavor, think Indie Grill. Authentic Indian cuisine, rich spices, sizzling grills, unforgettable taste. Al Saad, West Bay and The Pearl. Dine in or take away. Indie Grill, where Indian flavors come alive.
1: यार बजट ही नहीं बन रहा है, प्राइसेस देखिए, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
2: मैंने बोला था ना, मई 12th का वेट कर।
1: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
2: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th टू 19th में। इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
1: किलर ऑफर्स। मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
3: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट।
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
6: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

बस खरा खरा मेडल आ जाए तो मजा मरा मरा नहीं रहेगा बल्कि मजा आ जाएगा। यस मस्त मौला गौरव, आपको बता दें कि आज से शुरुआत हो रही है फोर्थ जीसीसी गेम्स दोहा 2026 की और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बिल्कुल तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से कर दी है एंड कह सकते हैं कि ये पूरे गल्फ के 6 नेशंस के जितने भी सुपर डुपर स्टार्स हैं ये 17 अलग अलग स्पोर्ट्स में अपनी पूरी मेहनत दमखम दिखाएंगे और अपने देश के लिए मेडल जीत कर जीसीसी गेम्स को और खूबसूरत बनाने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए दोहा 2026 फोर्थ जीसीसी गेम्स एंड मुझे लगता है कि कतर इस बार घर में और स्ट्रांग फील कर रहा है। ऑल द बेस्ट टू कतर एंड हम और आप तो हैं ये हर स्पोर्ट्स में जाकर सपोर्ट करना है क्योंकि इस बार इसकी थीम लाइन है वन गल्फ वन हार्ट एंड हम तो कह रहे हैं यही शुरुआत है दोस्त। हो सकता है आने वाले दिनों में जब यूनिफाइड वीजा हो जाए तो हम वाकई में एक दिल एक जान हो जाएंगे और अलग अलग जगह घूमेंगे। वैसे कतर की बात करें तो 300 लोगों का स्ट्रांग कंटिजेंट जो है वो आज से लेकर 22 मई तक अपने देश के लिए मेडल जीतने में लगेगा। उसके अलावा लगभग 1000 मोर एथलीट्स आर कमिंग फ्रॉम 6 नेशंस एंड ये एक शानदार गेम होने वाला है इसमें कोई डाउट नहीं है एंड कतर इज आइंग फॉर टॉप पोजीशन और मुझे लगता है कि कतर के टैलेंट हैं इतने सारे कि यहां पर मेडल्स भी आएंगे ढेर सारे। ऑल द बेस्ट टू टीम अन्नावी 89.6 मिर्ची वन हबीबी हरारा कतीर इट्स हॉट।

0: तुम्हारे ही रहेंगे हम, और हम आप ही के तो है, नाम ही है मस्त मौला गौरव। और देखिए कतर में कुछ भी चलता है हम आपके कानों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप आराम नाल देखते रहें और समझते रहें कि आप कहां जा सकते हैं, कहां की चीजें कंप्लीट हो गई, कहां एकदम जबरदस्त तरीके से आपके लिए नई नई चमचमाती सड़कें इंतजार कर रही है। क्योंकि पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगाल ने अनाउंस किया है पैकेज 2 ऑफ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो अल खरतियात और इस गांव में चला था वो कंप्लीट है। #974 रोड नेटवर्क की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, ये अशगाल से ही पूछा जाता है। और अशगाल समय समय पर रोड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को इतना मजबूत करता है जो कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। और जितने भी रेसिडेंट्स हैं या सिटीजन, उनके लिए कंट्री में जिस भी तरह के रोड्स की दरकार है उसको दिन रात एक कर बनाने की कोशिश करता है। एंड हेड ऑफ नॉर्दर्न एरिया सेक्शन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट इंजीनियर अब्दुल्ला अल नुएमी साहब ने क्लियर किया है कि सेकंड पैकेज जो था वो एकदम जबरदस्त कर दिया गया है। 1514 रेसिडेंशियल प्लॉट्स जो है उनका डेवलपमेंट इंटरनल रोड्स की तरफ जाकर किया गया है, और अब इन सारे प्लॉट्स पर अप्रोच रोड बहुत शानदार बन चुकी है। ये पूरा का पूरा काम अल खरतियात एंड इसगावा साइड हुआ है, एंड मुझे लगता है आने वाले टाइम में अब इस इलाके में भी लोग आराम से अच्छे अच्छे हाउस रेंट कर पाएंगे। फिलहाल इसी उम्मीद में कि लगातार अशगाल हमारे कतर को खूबसूरत बनाने में दिन रात मेहनत करता है, अभी भी माशाल्लाह आपकी मेहनत की जोरदार हम तारीफ करते हैं। एंड हर जगह जहां भी हमें अशगाल दिखाई देता है हमें यह पता होता है कि एक दिन वहां सब चमचमाती सड़कें आने वाली हैं। इस उम्मीद में कि कतर की सड़कों का यूं ही ब्यूटिफिकेशन होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं और मुंह मुंह के धागे की तरफ आपको ले चलते हैं मिर्ची थॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: उम्मीद में कि लगातार अशगाल हमारे कतर को खूबसूरत बनाने में दिन रात मेहनत करता है, अभी भी माशाल्लाह आपकी मेहनत की जोरदार हम तारीफ करते हैं। एंड हर जगह जहां भी हमें अशगाल दिखाई देता है हमें यह पता होता है कि एक दिन वहां सब चमचमाती सड़कें आने वाली हैं। इस उम्मीद में कि कतर की सड़कों का यूं ही ब्यूटिफिकेशन होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं और मुंह मुंह के धागे की तरफ आपको ले चलते हैं।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स सिंपल सीधा नो टेंशन चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st आईपी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स TNC अप्लाई
1: एकदम सही सुना तुमने किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन कोई पेमेंट नहीं कोई कमिटमेंट नहीं बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट
4: अरे भाई गुस्सा मत कर इंसाफ और एंटरटेनमेंट
5: दोनों मिलेगा
0: का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट

0: बुल नहीं रहा है, उबल रहा है भैया। दोपहर में गाड़ी के अंदर का माहौल उबल रहा है। 89.6 मिर्ची 1 पर आरजे मस्त मौला गौरव आपके साथ है। अमित मिश्रा शिल्पा राव की आवाज में गाना खत्म हुआ और मौसम अभी तो शुरू है जनाब, अपनी गर्मी का रंग दिखाना शुरू हो चुका है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट
0: बात करें तो आज आपको जबरदस्त हाई टेम्परेचर मिला है, 40 डिग्री सेल्सियस दिन का मैक्सिमम तापमान गया है और मिनिमम अराउंड 27 आएगा। पर बड़ी बात यह है कि हवाओं के चलते गर्मी थोड़ी कम लगे ऐसी फीलिंग आई है। हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले आज काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो हॉट हॉट फीलिंग कराया है, लेकिन टेम्परेचर से भी ज़्यादा फीलिंग हॉट आई है इसलिए क्योंकि बड़े दिनों से आदत पड़ी हुई नहीं थी कि कैसी होती है गर्मी। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है दोस्तों, शुरुआत हो गई है। अपना ध्यान रखिए, पानी लगातार पीते रहिए। और अब हमारे नए साथी हैं इस वेदर चेक के RSL ग्रुप, जहां पर आप अगर ड्राइविंग या फिर डिलीवरी राइडर बनना चाहते हैं तो जॉब के मौके हैं। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future call now 3100-0813.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय देवगन, फर्ज करते हैं आप माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं. देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर्स केआर के, देयर्स करण जौहर एंड देयर्स काजोल. दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे.
3: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
2: Because that's the game. हमको दोनों को तो बचाने ही पड़े.
3: मुझे बचाने नहीं है. आई ब्रेक द रूल. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ.
2: ऐसा ही हूँ मैं.
3: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं.
2: अजय देवगन बीइंग अल्ट्रा सैवेज. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस. एम के आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अल वक्रा, अल जनूब गार्डन्स, ओल्ड एयरपोर्ट. 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल. एनरोल नाउ. कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424240. एम के आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस.
5: खट खट.
6: कौन है?
5: अज्जू.
6: अज्जू कौन?
5: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए. होए!
6: खट खट, हु दैट?
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
1: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: खूबसूरत गाना बैरन, और सुनाया किसने भाई? वो नाम जो आपके जबान पर रहता, मस्त मौला गौरव। एंड फिलहाल घड़ी का टाइम ही बताएंगे, शाम के 5:01 से ज्यादा हो रहे हैं।
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: अब चलिए जी, मस्त मौला गौरव आपके साथ है। तो देवी और सज्जनों, टाइम आ गया है इस घंटे वो खेलने की जिसे हम कहते हैं और पहचान कौन। में एक आवाज सुनाता हूँ और आपसे पूछता हूँ, बताइए ये आवाज आज किसकी सुनाई जा रही है?
2: डेविड ने पता नहीं मुझे कॉन्फिडेंस भी ले लिया, जबकि दोस्ती मेरी अनिल से है, पर डेविड ने कहा यार गोविंदा के साथ सीन करना है, और वो सीन हो गया तो कहता तू बताना मत।
3: अच्छा।
2: तो मैंने अनिल को बताया नहीं, पर अनिल को तो अगले दिन पता चल गया।
0: और ये कौन है जो अनिल के अच्छे दोस्त है और गोविंदा के साथ इन्होंने एक सीन कर दिया और डेविड ने इनको उसमें फंसा दिया था? फिर से सुनिए, बताइए, बहुत ही जानी पहचानी आवाज है ये।
2: डेविड ने पता नहीं मुझे कॉन्फिडेंस भी ले लिया, जबकि दोस्ती मेरी अनिल से है, पर डेविड ने कहा यार गोविंदा के साथ सीन करना है, और वो सीन हो गया तो कहता तू बताना मत।
3: अच्छा।
2: तो मैंने अनिल को बताया नहीं, पर अनिल को तो अगले दिन पता चल गया।
0: 5001896 पर वॉइस नोट में आपका जवाब चाहिए। क्या मैं गौरव भाई, ये जो आप आवाज सुना रहे हो ये तो फला की है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये कॉमेडियन बाद में डायरेक्टर भी बने एंड सुपर डुपर फिल्में बनाई, एंड जिसके भी साथ आते थे कॉमेडी में छा जाते थे। एक आखिरी बार आवाज सुनाता हूँ, अगली बार जवाब चाहिए आपसे।
2: डेविड ने पता नहीं मुझे कॉन्फिडेंस भी ले लिया, जबकि दोस्ती मेरी अनिल से है, पर डेविड ने कहा यार गोविंदा के साथ सीन करना है, और वो सीन हो गया तो कहता तू बताना मत।
3: अच्छा।
2: मैंने अनिल को बताया नहीं, पर अनिल को तो अगले दिन पता चल गया।
0: बस 5001896 पर बोल दीजिए। मैं गौरव भाई, ये तो आवाज इनकी है, हमने पकड़ लिया है, बस ये आवाज इनकी है। जल्दी जल्दी वॉइस नोट में अपना जवाब भेजते रहिए और मिर्ची पर मेरे साथ पहचान कौन खेलते रहिए। मिर्ची गरम है।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Pepe Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Na vjet bala burka. Mirci, burka.
2: हेलो
3: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ मेरी
2: जी बोल रहा हूँ
3: हाँ जी भाई संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ आपको थाना आना पड़ेगा
2: क्यों
3: मैं आपको यही बता रहा हूँ आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर
2: गए थे जी
3: आपने धरने पे बैठे थे आप
2: जी बैठे थे
3: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था सबके लाठियाँ पड़ी थी आपके रह गई हैं आपकी तीन लाठियाँ लगनी है यहाँ आके लगवा लो जल्दी से
2: हाँ बताओ जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे
3: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा मैं ये नहीं जानता जस्टिस आप वहाँ पे गए थे आप इस बात को मान रहे हो
2: जी गए थे जी
3: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे
2: जी
3: आपके पड़ी लाठी कोई
2: मेरे तो नहीं पड़ी
3: वही तो मैं कह रहा हूँ आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार वैसे ही मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी आपके पड़ी नहीं आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से
2: सर आप नाराज क्यों
3: नहीं नाराज क्योंकि बात है बताइए हाँ बताओ
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था कहाँ पे बहुत दूर था सर लाठी
3: तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई बहुत दूर थे
2: बहुत दूर था
3: भाई इतने मैं यही तो कह रहा हूँ बहुत दूर खड़े थे आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगते
3: वही तो मैं कह रहा हूँ यार आप बच गए तीन लाठियाँ रजिस्टर में चलाइए अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
2: सर नाराज क्यों है
3: तो नाराजगी की तो बात है
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया
3: तो अब मैं आपसे मैं भी आपका दोस्त हुआ आपको आ जाओ तीन लाठियाँ मारेंगे आपके छोड़ देंगे आपको यार क्या परेशानी है वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई जल्दी आ जाओ भाई यार
2: मैं शाम में आ जाऊंगा
3: यार नहीं नहीं यार मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई इस बात समझ में नहीं आ रही लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है बहुत दूर था
2: नाराज
3: वाली बात है यार ओके चलो लाठी मत करो लाठी नहीं मारेंगे मुर्गा बन जाओ संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी हालांकि वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
4: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.

0: मीत ब्रदर्स अनजान कनिका कपूर की आवाज में ये गाना सुनाया किसने आपकी जान?
1: मस्त मौला गौरव।
0: सवाल इस घंटे खेलने का होता है
2: पहचान कौन,
0: और पहचान कौन में एक आवाज सुनाई जाती है और पूछा जाता है बताइए ये किसकी आवाज थी।
3: डेविड ने पता नहीं मुझे कॉन्फिडेंस भी ले लिया, जबकि दोस्ती मेरी अनिल से है, पर डेविड ने कहा यार गोविंदा के साथ सीन करना है और वो सीन हो गया तो कहता तू बताना मत।
4: अच्छा,
3: तो मैंने अनिल को बताया नहीं, पर अनिल को तो अगले दिन पता चल गया
0: और मैंने पूछा ये आवाज किसकी थी, जवाब आ गए हैं।
5: हेलो मिर्ची वान कितार, हाउ आर यू गौरव भाई, दिस इज युगल, और ये जो आवाज है ये हमारे बहुत ही फाइनेस्ट आर्टिस्ट ऑफ इंडियन सिनेमा सतीश कौशिक साहब, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू भाई, थैंक यू,
6: गुड इवनिंग, दिस इज शिवा विद यू मिस्टर गौरव, हाउ आर यू, द वॉइस इज सतीश कौशिक।
7: Okay. Hi Guru, good evening. This is Sudhir, and it's none other than late Satish Kaushik. Thank you. Good evening to all the listeners. Sadie Michi, it's hot.
0: It's hot.
8: His name is Satish Kaushik.
9: Satish Kaushik. My name is Bharat Kachari.
10: Hi Gaurav, this is Hasan speaking. ये जो आपने आवाज अभी सुनाई है ये सतीश कौशिक है, मशहूर कॉमेडियन, थैंक यू वेरी मच।
11: Hey Gaurav, how are you? This side Jignesh here. I think ये आवाज सतीश कौशिक जी की है, जो अनिल कपूर के बारे में बात कर रहे हैं।
0: Okay.
11: And if I'm not wrong, the movie name is Deewana Mastana. Thank
0: okay,
11: you. Bye.
0: Okay.
7: Good evening, Gaurav.
0: Good evening.
7: How are you? कैसे हैं आप?
0: बढ़िया भाई.
7: यूसुफ हियर.
0: जी.
7: ये आवाज है सतीश कौशिक की.
0: जोरदार ताली यार.
7: Thank you. Bye bye.
0: और मुझे तो उन पर भाई हो रहा है कि उन्होंने बताया दीवाना मस्ताना का ये सीन है यार, कमाल के लोग फैन है। एंड यस, सतीश कौशिक इज द राइट आंसर फॉर टुडे इज पहचान करना पहचान कौन। फिलहाल बस इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसे ही खेलते रहिए मेरे साथ हर दिन शाम 5 से 6 के बीच ये पहचान कौन। लेकिन फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, गाना पहचानने के लिए बढ़िए बताइए गुरु रंधावा के आवाज में कौन सा गाना है। पकड़ लिया मुझे पता आपने पकड़ लिया मिर्ची थॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची इट्स हॉट। कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
5: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। MK आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अलवक्रा अलजनूब गार्डन्स ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424। MK आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
6: यार बजट ही नहीं बन रहा है, प्राइसेस देखिए, सब्जी को हाथ लगाओ तो करंट लगता है।
7: मैंने बोला था ना मी 12th का वेट कर।
6: क्यों, सब सस्ता हो जाएगा क्या?
7: सब जगह नहीं, सिर्फ पेरिस हाइपरमार्केट में। मुमताजा ब्रांच की 4th एनिवर्सरी है 12th to 19th में। इट्स अ बिग प्राइस रिडक्शन,
6: किलर ऑफर्स। मैं अभी बैग पैक करता हूँ।
7: जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ सेविंग्स, ह्यूज डिस्काउंट्स ओनली एट पेरिस हाइपरमार्केट। मुमताजा, डोंट मिस आउट। हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
8: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
7: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
9: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
10: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

आशीष कौर की आवाज में, बड़ा पछताओगे तो पछताने दीजिए, हम तो आपके साथ हैं, बिल्कुल नहीं पछताते, हमको तो मजा है आती। सबके बीच आप पछताएंगे नहीं, अगर आप पढ़ते जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि कतर में ये मौके आपको बहुत मिलते हैं। जैसे अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन ने रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं वोकेशनल, टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल स्कूल्स के लिए, यस। और वो स्कूल लिस्ट भी आप तक जल्द आएगी। रिलीजियस प्रिपेटरी एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूट फॉर बॉयज, इसके अलावा कतर टेक्निकल सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज, जहां पर मैकेनिक्स में जनरल एंड वेल्डिंग, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड साइबर सिक्योरिटी।

0: इसके अलावा कुछ और स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, प्रिसिशन मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसके अलावा सिक्योरिटी सेफ्टी में, एंड बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज भी हैं जिसमें आप एडमिशन ले पाएंगे, दोहा ब्रांच, शमाल ब्रांच। कोशिश कीजिए अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो आपको लगता है कि अपने बच्चों को लेकर परेशान है कि उसे किस तरह की एजुकेशन दिलाएं, तो ये स्पेशलाइज स्कूल कोर्सेज उन बच्चों के लिए एक तरह से आने वाले टाइम में रोजगार यानी कि जॉब्स के भी टाइम लेकर आएंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे। आई एम श्योर ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, जरूर शेयर कीजिए उन दोस्तों से जो अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर थोड़ा परेशान है कि किस तरफ उनको लगाएं कि वो आने वाले टाइम में अच्छे से पढ़कर कुछ बन जाए। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

आता है, ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है, भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिब्लिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
3: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
4: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
3: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
2: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कथक के हर कदम में छुपा है ग्रेस, कल्चर और कॉन्फिडेंस। एम के आर्ट्स एकेडमी अब दो ब्रांचेस में, अल वक्रा, अल जनूब गार्डन्स, ओल्ड एयरपोर्ट। 6 साल से लेकर हर एज के लर्नर्स के लिए सर्टिफाइड कोर्सेज अवेलेबल। एनरोल नाउ, कॉल या व्हाट्सएप करें 5112424240। एम के आर्ट्स एकेडमी, वेयर ट्रेडिशन मीट्स एक्सलेंस।
6: खट खट,
7: हू दैट?
6: अकबर। अरे अखबार बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे।
7: खट खट, हू दैट?
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

तू जो है तो मैं हूँ, और मैं अपने वॉलेट को भी यही कहता हूँ। तू जो है वॉलेट तो ही मैं हूँ, वरना तो भैया सब सू सू है, मतलब कुछ भी नहीं है, साए साए उड़ जाता है पैसा। वैसे अगर आपके पास बचते हैं तो काहे को घबराते हैं, घर बेच के आज अच्छे रेट अपनी आंटी में करते हैं। इंडियन रुपीज ऑल टाइम हाई की तरफ 26.11 एक कतरी रियाल के बदले 26.11 रुपए मिल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें जनाब तो आपको पाकिस्तानी रुपीज के बदले मिलेंगे 77.11 पाकिस्तानी रुपीज। अगर हम बात करें तपाई को नेपाली फीस के रेट चाहिए 41.63 का भल्छ रेट बनी 41.63 को नेपाली फीस के रेट चाहिए। अगर इसके बाद हम श्रीलंकन रुपीज की बात करें अगेंस्ट 1 कतरी रियाल 88.36 और बंधु बांग्लादेशी टका दादा একটা কাতরি রিয়াল কে বদলে 33.67 তো 33.67 এটা রেট আছে তো বাংলাদেশি টাকা তো মসমল গরম এই মির্চি পর আপকে সাথ বানা হুয়া হ্যায় আর আগলা গানা বহুত হি খুবসুরত অরিজিৎ সিং কি আওয়াজ মে বরফি সে ইটস হট।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: और मैं हूँ आपका नामी है और जब मैं आपके साथ हूँ तो फिगर नॉट बातें होती रहेंगी। एंड फिलहाल के लिए घड़ी सू में भाई शाम के 6:03 से ज्यादा
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और जब मिर्ची क्लॉक में शाम के 6 बज जाते हैं तो हम एक और कॉन्टेस्ट आपको खिलाते हैं और वो होता है बॉलीवुड से रिलेटेड। एंड फिलहाल के लिए आज का सवाल बॉलीवुड के सरप्राइज टेस्ट से ये वाला है। यस, आपको बताना है खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 की शुरुआत हो गई है और इस बार फरहाना भट्ट जो हमें बिग बॉस में दिखी थी वो यहां भी दिखने वाली है। लेकिन क्या बता सकते हैं कि खतरों के खिलाड़ी के सबसे ज्यादा सीजन किसने होस्ट किए हैं? जैसे बिग बॉस इज नोन फॉर सलमान खान, खतरों के खिलाड़ी का सीजन सबसे ज्यादा किसने होस्ट किया है? अगर आपको यह पता है तो 5000 1896 पर जरूर बताइएगा। हिंट में इतना ही कहूंगा ये बड़े ही शानदार मूवी डायरेक्टर है। 5000 1896 पर वॉइस नोट पर अपना जवाब भेजिए कि गौरव खतरों के खिलाड़ी सीजन को सबसे ज्यादा होस्ट किया है फला आदमी ने। 5000 1896 हिंट यहां भी छुपी हुई है। देखिए कितने लोगों को पता है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virgua, la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes.
2: Water से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी.
2: Madam, please किसी mechanic को बुला देंगे, मेरी गाड़ी out of control हो गई है.
1: ठीक है sir.
2: 5 seconds जल्दी.
3: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ.
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: प्लीज जल्दी बता दो.
1: हेलो
2: हेलो, होल्ड नहीं कर सकता. हेलो,
4: हाँ जी सर.
2: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
4: सर हैंड ब्रेक खींच दो.
2: एक सेकंड
4: एक सेकंड रुकिए सर. साइड में, लेफ्ट साइड में.
2: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
4: सर, इग्निशन ऑफ कर दो.
2: इग्निशन, एक सेकंड रुकिए. ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं.
4: हाँ जी.
2: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
4: मेरे को क्या पता कहाँ पे है.
2: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से.
4: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो.
2: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींच रहा. एक सेकंड, कुछ और. ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं?
4: हाँ जी.
2: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए.
4: बिल्कुल गए. एक्सेलरेशन छोड़ दो सर.
2: क्या करूँ?
4: एक्सेलरेशन छोड़ दो.
2: एक सेकंड रुकिए.
4: क्या हो गया?
2: गाड़ी ठुक गई.
3: मैडम, क्या नाम है आपका?
1: दिव्या.
3: मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने.
1: I was so tense, I don't know what happened.
5: कुकड़ों को मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
6: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1. It's hot. 89.6 It's hot.

0: नादान या अक्षत की आवाज में ये गाना किसने सुना दिया? जब मस्त मौला गौरव आपके साथ है देवी और सजनों, बहुत सारी बात है, लेकिन इस घंटे हम खेलते हैं बॉलीवुड का वो टेस्ट जिसमें मैंने पूछा था क्या बता सकते हैं खतरों के खिलाड़ी। इस बार सीजन 15 में फरहाना भट्ट आ रही हैं और भी बड़े नाम आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सीजन किस एंकर ने होस्ट किए?
1: गुड इवनिंग, माय नेम इज अजीत डांगड़े एंड द आंसर इज रोहित शेट्टी।
2: सबसे ज्यादा खतरों के खिलाड़ी के सीजन आई गेस रोहित शेट्टी ने होस्ट किए।
0: ओके,
3: हाय माय नेम इज तनवीर अब्बास। खतरों का खिलाड़ी सबसे ज्यादा होस्ट किया है वो रोहित शेट्टी ने किया है।
0: यस
4: गौरव जी, खतरों के खिलाड़ी के मैक्सिमम सीजंस होस्ट किए हैं रोहित शेट्टी ने।
5: एक और गुड इवनिंग, द रेनाउंड डायरेक्टर अबाउट होम यू हैव बीन आस्किंग इज रोहित शेट्टी। ओके थैंक यू
6: गौरव, गुड इवनिंग अगेन।
0: जी जी
6: जी, ये खतरों के खिलाड़ी के होस्ट रोहित शेट्टी है। ठीक है, थैंक यू।
0: ओके,
7: हेलो मेरा नाम शाहरुख खान है
0: जी,
7: रोहित शेट्टी ने किया है सबसे ज्यादा होस्ट खतरों के खिलाड़ी।
0: यार बिल्कुल सही जवाब है रोहित शेट्टी, लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात थी कि इसका एक सीजन कभी किसी जमाने में अर्जुन कपूर ने भी होस्ट किया था। मतलब अर्जुन कपूर फिल्मों से छूट कर खतरों के खिलाड़ी में आगे होस्टिंग कर रहे थे। वैसे वो ये काम भी इतना अच्छा कर पाए कि अगला सीजन उन्हें मिला नहीं, जैसे कि उन्हें फिल्में भी मिल जाती हैं जब वो अच्छी एक्टिंग करते हैं। 89.6 मिर्ची व्हेन इट्स हॉट।

0: मन मर्जियां शिल्पा राव के साथ साथ और कितने सारे लोगों ने गाया। अमिताभ भट्टाचार्य भी इस गाने में इनका हिस्सा बने एंड एक शानदार गाना कह सकते हैं, इतना प्यारा जो वाकई में एकदम दिल को छू लेता है। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक हो तो चीजें ऐसी खूबसूरत बनी ही जाती हैं। फिलहाल आपके साथ अपनी आवाज लेकर लेकिन अब फिलहाल कतर के ग्रोथ की स्टोरी एक बार फिर से स्पॉटलाइट में आ गई गाइस। यस, क्योंकि दोहा में प्रोजेक्ट कतर 2026 का ग्रैंड कमबैक होने जा रहा है।
1: #974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, 9th ऑफ जून से लेकर 11th ऑफ जून DECC बोले तो दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में ये इनोवेशन कंस्ट्रक्शन एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बनेगा एंड कह सकते हैं जून 9 टू जून 11th कतर में प्रोजेक्ट कतर 2026 का 22nd एडिशन जो है वो शुरू हो जाएगा। और ये कतर इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये सब को ध्यान रखते हुए इस बार थीम रखी गई है मैन्युफैक्चर बिल्ड इनोवेट। और ऑनेस्टली ये थीम कतर के उस विजन को भी अलाइन करती है जो 2030 का कतर ने विजन रखा हुआ है, उसको ही रिप्रेजेंट कर रही है पूरी की पूरी लाइंस। गवर्नमेंट सपोर्ट होगा, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होगी एंड रीजनल कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे बड़े लोग, बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, इनोवेटर्स इसका हिस्सा बनेंगे और नई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस ग्रोथ की बनेगी। दोस्तों यहां दिमाग लगाए रखना है, तो अगर आप कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या फिर बिजनेस सेक्टर के किसी भी इसी तरह की चीजों से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके पास मौका है प्रोजेक्ट कतर 9 टू 11th ऑफ जून एट DECC। क्या पता ये मैंने आज बताया लेकिन आपके आने वाले जून में जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली हो। मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
3: Authentic, original and better than our rivals.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईबी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईबी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईबी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
2: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
3: कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मिर्ची मिर्ची पे आपके साथ वो शख्स जो शाम 4 से 8 बजे तक रहता है, नाम है
1: मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन फिलहाल आप सिर्फ 4 घंटे नहीं, पूरे एक अच्छे लाइफ टाइम के सफर पर जा रहे हैं। वो ऐसा सफर जो आपको ऊपर वाले से कनेक्ट करेगा एंड आपके जीवन का एक सपना पूरा करेगा। हज की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक इम्पोर्टेंट चीज बताई है।
2: #974
0: मस्त मौला गौरव यहाँ आपको बताना चाहता है कि MOPH ने हज पिलग्रिम से जो हज पे यात्री जा रहे हैं उनको कुछ जरूरी हेल्थ गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि वो रोजाना वॉक करना शुरू कर दें, अपने टारगेट को 8,000 से 10,000 स्टेप्स के करीब रखें, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनको बैलेंस डाइट लेनी है, शुगर सॉल्ट और अनहेल्दी फैट वाली चीजों से थोड़ा दूर रहिए, वजन कम करके ही जाइए, मेडिकल चेकअप जरूर कीजिए अगर सीनियर सिटीजन या फिर कोई क्रॉनिक कंडीशन वाला आपके घर में जैसे डायबिटीज वाले लोग हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, और अपनी फिटनेस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। मेडिकल किट अपने साथ जरूर रखनी है जिसमें सारी जरूरी दवाइयां एंड वो डिवाइसेस जैसे ग्लूकोज मीटर हो गया, बीपी मशीन हो गई, आप ये सब जरूर रखिएगा। एंड कोशिश कीजिए कि जब आपकी फ्लाइट उड़ान भरे तो उसके बाद से ही आप जैसे ही हज के लिए निकले वहां सऊदी पहुंचे, कोशिश यही कीजिएगा कि बहुत सोच समझ कर ही खाने पीने पर जोर दें। हैं जी, ऊपर वाले की इबादत का समय होगा एंड मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बाकी सारी चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठकर अपने लिए फास्टिंग शुरू कीजिए, कोशिश यही कीजिए तेज तेज वॉक करें ताकि वहां जो हज का सफर है ना वो वहां आपके लिए सब कुछ आसान हो जाए। वैसे मुझे पता है आप जिस दिल से जा रहे हैं ऊपर वाला आपकी हर बात पूरी करेगा और आपको हिम्मत ताकत सब्र देगा। 89.6 मिर्ची 1 पर इतनी अच्छी बातें बताई तो मेरे लिए एक छोटी सी दुआ तो बनती है दोस्त। मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
1: अरे होचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: बहुत सारे नए जॉब्स होने वाले हैं।
1: मस्त मौला गौरव।
0: नहीं, हमारे आपके लिए नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ पर पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अशगल के फोर्थ बैच ऑफ एम्प्लॉयज वाली एक एक्रेडिटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है। शाम के 7:03 से ज्यादा
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: Yes, Ashgal ने भी अपना fourth batch of employees को complete किया है, जहां पर उनके accredited training programs जो थे वो चल रहे थे, और अब इनमें से बहुत सारे लोगों का promotion होगा। I'm sure वो अपने specialized courses को करने के बाद और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। Well, बता दे, 161 engineers and staff members जिन्होंने अपना जबरदस्त program complete किया by Ashgal's human resource department, and ये प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज थे, जैसे वो जो एक्रेडिटेशन कोर्स लिया उन्होंने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि उनके लिए बाकायदा तैयारियों के साथ किया गया है, और अगर आपने सेकेंडरी स्कूल डिप्लोमा लिया हुआ था तो आपके पास ये मौका था कि आप अपने से चूज करते हुए सपोर्टिंग फील्ड में जाएं। वेल, नेशनल विजन 2030 यही कहता है कि और ज्यादा ट्रेंड एंड एफिशिएंट कैसे बनाया जाए एम्प्लॉयज के उस टैलेंट को, उसी पर यह काम कर रहा है। और अशगल के इस तरह से चौथे कह सकते हैं ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जो फोर्थ बैच आया, यह आने वाले टाइम में कमाल करेंगे एंड अशगल के लिए और अच्छा काम करेंगे। मस्त मौला गौरव फिलहाल अपने रेडियो पर अच्छा काम कर रहा है और आप लोगों को अपने अच्छे गाने सुनाकर दिल चोरी कर रहा है। अगला गाना आदित्य त्रिकारी श्रेय घोषाल की आवाज में, दिल वाले चोरी।

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabala. Burga, burga. La vieja la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल?
3: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही का ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
2: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
5: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: मैं ना पढ़ाई को लेके कभी डेस्परेट नहीं हुआ, लेकिन पिटाई को लेके मैं बड़ा प्री प्रिपेयर्ड रहता था। मैं आज दोपहर में बता रहा था कि मतलब जब मम्मी मुझे एग्जाम के रिजल्ट के लिए बुलाती तो उससे पहले ही मैं अपने गालों को मजबूत कर लेता था 3-4 थप्पड़ मार के, ताकि मम्मी वाली जो मार है वो कम लगे। लेकिन मैं कहता हूँ एजुकेशन में अब जो बदलाव आ रहे हैं ना, वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी सिखा रहे हैं। और ऐसी शुरुआत हमारे कतर में होने जा रही है एजुकेशन सेक्टर के सबसे नए डायरेक्शन की तरफ फास्ट मूव करता हुआ। अब आप सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि रियल स्किल और फ्यूचर करियर पर अभी से ध्यान दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हायर एजुकेशन हमारे कतर में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एंकरेज कर रहा है, वो भी वोकेशनल टेक्निकल और स्पेशलाइज एजुकेशन स्कूल में रजिस्ट्रेशन कर अपने बच्चों को इस तरफ ले जा सकते हैं। यस, मारिफ पोर्टल पर ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन ओपन है, May 14 तक ही ओपन रहेंगी। और ये बेसिकली इनिशिएटिव इसीलिए लिया गया है कि स्टूडेंट्स को नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल में भी कन्वर्ट करने की क्षमता हो और क्लासरूम लर्निंग नहीं फ्यूचर रेडी ट्रेनिंग भी मिल जाए, यानी कि बच्चा अभी से ही टेक्निकल ट्रेनिंग लेकर अपने करियर को बना सकता है। यस, हम आपको बता दें कि इस वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग और एकेडमिक स्टडीज को कंबाइन कर एक जबरदस्त शुरुआत की जा रही है जो लेबर मार्केट में आने वाली डिमांड्स के लिए बच्चों को रेडी करेगा। एंड आई एम श्योर एक शानदार शुरुआत है जो कतर में एजुकेशन को मॉडर्न करियर्स के साथ साथ कनेक्ट करेगी एंड पैशन मीट्स प्रोफेशन हो जाएगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे क्योंकि हम में से कुछ बच्चे होते हैं यार जिनका पढ़ाई लिखाई में बड़े ही मन न लगे, लेकिन कोई काम अगर मिल जाए और टेक्निकल स्किल थोड़ी सी सीख जाएं तो उस काम में अव्वल नंबर कमा लेते हैं। इस उम्मीद से कि आप हमारी पोर्टल पर जाकर अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से ऐसे कोर्सेज चूज करेंगे। मस्मोला गौरव आगे बढ़ता है काम की बात बताकर। 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
3: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग्स शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: दोहा के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पॉटलाइट है ना, वो इसी इवेंट से होती है। और ये वो जगह है जहां से कतर के ग्रोथ की स्टोरी की शुरुआत हुई थी। यस, बात करो मैं 22nd एडिशन ऑफ प्रोजेक्ट कतर 2026
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, 9th जून से 11th ऑफ जून यानी कि 9, 10, 11 जून दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा 22nd एडिशन ऑफ प्रोजेक्ट कतर 2026। और ये सच में यार कतर की ना उस पूरी ग्रोथ को दिखाता है ये इवेंट। कतर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है उसी के लिए है। एंड इस बार की थीम है मैन्युफैक्चर, बिल्ड एंड इनोवेट। और ऑनेस्टली ये कतर की 2030 विजन से ना परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ थीम रखी गई है। वेल, गवर्नमेंट सपोर्ट, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन और कई रीजनल बड़े प्लेयर्स इसमें हिस्सा बनेंगे। एंड ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर बिजनेस के लिए, इंजीनियर्स के लिए, इनोवेटर्स के लिए, स्पेशली अगर आप रियल स्टेट से, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से, तो आपके पास मौका है कंस्ट्रक्शन वालों, टेक्नोलॉजी वालों या फिर बिजनेस करने वालों कि आप इस प्रोजेक्ट कतर का

0: सब बने एंड अपनी लाइफ की सक्सेस स्टोरी भी यहीं से लिखनी शुरू कर दे। सो वंस अगेन आई विल जस्ट मेक यू रिमाइंड कि ये 22nd एडिशन है और इस बार भी ये शानदार बेहतरीन जबरदस्त होने वाला है। तैयार हो जाइए 9th to 11th of June। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से हैं, अगर आप यू नो बिजनेस सेक्टर के उसमें हैं जहां पर इनोवेशन का काम है, तो वन सच इवेंट इज हियर एंड 9th to 11th June हमारे कतर में प्रोजेक्ट कतर 2026 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट 89.6
1: It's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाहरुख खान, आपके बिजी स्केड्यूल की वजह से हम अज्यूमिंग है आपको स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने का समय नहीं मिलता, लेकिन बचपन में आप क्या क्या खेला करते थे?
3: पहले क्रिकेट भी खेलता था मैं, नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, गुरशरण सिंह जी हमें प्रैक्टिस कराते थे और मुझे बहुत शौक था, हर गेम का शौक था, वो गेम का जो मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं।
2: शाहरुख खान इतना चार्म कहाँ से लाते हैं? ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ की नेटवर्थ होने के बावजूद भी ही इज द ओनली वन दैट साउंड्स रिलेटेबल। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हु दैट?
4: जस्सी।
5: जस्सी, कौन सी वाली जस्सी?
4: जस्सी हु हैज कम आंटी जी।
5: खट खट, हु दैट?
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 मिर्ची इट्स हॉट।

ये हज का सफर है दोस्त, यहाँ फिटनेस भी जरूरी है। मस्त मौला गौरव जानता है कि बहुत सारे लोग अपने हज यात्री बनने की तैयारियां कर रहे हैं और अपने अपनी यात्रा पर निकलने से पहले अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इन सारे पिलग्रिम से एक इम्पोर्टेंट हेल्दी गाइडलाइन शेयर की है जो कि उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो जा रहे हैं। यस, आप रोज वॉकिंग करना शुरू करें, 8,000 to 10,000 स्टेप्स के बीच में अपना टारगेट रखें, क्योंकि बॉडी जितनी फिट होगी उतना ही कंफर्टेबल और सेफ हज यात्रा पूरी कर पाएंगे। इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स, ऑयली फूड और अनहेल्दी फैट्स को अवॉइड कीजिए, ये आपको कमजोर बनाएगा, इस बात को समझिए। और अगर सीनियर सिटीजन है और थोड़ा क्रॉनिक इलनेस है, मान लीजिए डायबिटीज जैसी, तो आपको अपने मेडिकल कंसल्टेंट से जरूर मिलना चाहिए, डॉक्टर से मिलकर सारी जरूरी तैयारियां कर जाने चाहिए। अपने मेडिकल किट को अपने साथ रखिएगा और कोशिश यही कीजिएगा कि एक हेल्दी, सेफ और बेहतरीन सुकून वाला हज का सफर पूरा हो और आपकी हर दुआ कबूल हो, यही ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा। एंड आप भी मेरे नाम से दुआ जरूर पढ़ेगा और मेरी अम्मी जल्दी ठीक हो इस बात के लिए भी एक छोटी सी दुआ कर दीजिएगा, इस उम्मीद में कि आपका ये हज का सफर पूरे लाइफ टाइम आपको याद रहे और एक बेहतरीन जिंदगी का एक्सपीरियंस आप पाए। मस्त मौला गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार लेकर यही मिर्ची पर। तब तक ले हबीबी, मां सलामा, हरारा खतीर, मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
0: सो आई रिसेंटली मेट अ गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप, यू नो शी इज गुड बट शी अर्न्स वे मोर देन मी, आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या करूं।
1: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो, शर्म।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
3: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
4: The show starts in.
5: हर हफ्ते मैं यहां आता हूं 20 गाने आप और ये काउंटडाउन. लेकिन आज एक बात कहनी है पहले. बॉलीवुड में बहुत शोर है, बहुत चमक, बहुत पीआर, बहुत नॉइज. और उस शोर में कुछ गाने होते हैं जो सच में फील किए गए हैं, लिखे गए हैं, जिए गए हैं. वो गाने अलग सुनाई देते हैं हमेशा. आज का शो उन गानों के बारे में है, उन लोगों के बारे में है जिन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, जिन्होंने शोर नहीं मचाया, बस काम किया और वो काम आप तक पहुंचा इस काउंटडाउन के जरिए, मेरे जरिए. हाय, आई एम सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी म्यूजिक काउंटडाउन. और मैं आपको वो सब सुनाऊंगा जो डिजर्व करता है सुना जाना, नंबर 20 से नंबर 1 तक. तो शुरू करते हैं विद गाना नंबर 20, रणवीर सिंह, धुरंधर, इश्क जलाकर.
6: नंबर 20.

और फिर नंबर 19 पर एक डेब्यू सॉन्ग आदित्य रिखारी और साथ में है श्रेया घोषाल जो 2026 में बिल्कुल एक जेंजी सिंगर की तरह सुनाई दे रही हैं। दिस वन इज कॉल्ड दिल वाले चोर फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। क्लियरली चीटिंग इज कूल। नंबर 19।

0: ये था क्या कमाल है नंबर 18 इस हफ्ते। एआर रहमान का म्यूजिक, इरशाद कामिल के अल्फाज और दिलजीत की आवाज। और इन गानों के बावजूद लोग कहते हैं नहीं यार, पुराने गाने ही अच्छे होते थे। मैं हूं सुरेन और आज मैं उस डिबेट को सीधा खत्म करना चाहता हूं। इरशाद कामिल, जिनसे ये बात मैंने खुद पूछी, उनका जवाब सुनिए।
1: Actually, I don't miss anything in today's song. क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है, और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं, और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुँचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। सो आई डोंट थिंक आई डोंट मिस एनीथिंग।
0: इरशाद भाई ने जो कहा वो सिर्फ सच नहीं है, वो अनकंफर्टेबल सच है। हम 250 गाने सुनते हैं लेकिन बाकी के 50,000 का क्या? वो दब गए, दे वर फॉरगॉटन। इसलिए पुराना जमाना परफेक्ट लगता है क्योंकि उसके बेकार गाने इतिहास ने ऑलरेडी डिलीट कर दिए। आज का म्यूजिक वीक नहीं है, आज का म्यूजिक बहुत ज्यादा है, एंड उसमें से भी एक चन्ना मेरेया है, एक सैयारा है, और ये वाला गाना भी है, क्या कमाल है। ये गाने अगर 1975 में आते तो आज हम इन्हें क्लासिक सॉन्ग्स कहते। मेरे लिए आज का पिक ऑफ द वीक भी इरशाद कामिल का ही है। रहमान साहब का म्यूजिक, इरशाद भाई ने क्या कमाल लिखा है, एक गाना जो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका है, संग बाय मोहित चौहान। दिस इज तुम हो फ्रॉम रॉकस्टार। पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज.
1: गुड इवनिंग
2: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से.
1: ओके
2: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे. राइट तो सर, आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे. राइट सर. मिस्टर मनोज, आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
1: टू टू जा फोर.
2: वेट सर, वेट.
1: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है
2: सर? यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा. दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
1: डर जाएगी.
2: गुड सर, वेरी गुड सर.
1: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब से है नहीं
2: सर, आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान.
1: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं
2: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं. पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले.
1: पूछो यार.
2: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
1: पूरे 100.
2: ग्रेट ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट. सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर. पोषण माह भाई पोषण पाल, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
1: जेल में जाना पड़ेगा.
2: ग्रेट सर, ग्रेट. रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
1: समझा नहीं मैं.
2: मैं बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा. मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है और ये क्विज उसी का था. जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
4: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
3: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार.
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
3: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
7: नंबर 7.
8: Say whoa!

0: ये था वाओ नंबर 7 लाउड कलरफुल 2026 की ब्लॉकबस्टर एनर्जी एग्जैक्टली एज एडवर्टाइज्ड। बट लेट मी टेक यू बैक टू 2006, 20 साल पहले। वो साल याद है, धूम, क्रिश, डॉन, लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ी बड़ी फिल्म्स, बड़ा नॉइज और उससे भी बड़ी ओपनिंग्स। लेकिन आज 2026 में अगर मैं आपसे पूछूं कि उस साल की सबसे एवरलास्टिंग एल्बम कौन सी थी, वो कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। वो एक मिड बजट फिल्म थी जिसका नाम था गैंगस्टर। कंगना रनौत, अनुराग बासु डायरेक्ट कर रहे थे, शाइनी आहूजा थे लीड में। वो कहानी हम दोबारा नहीं खोलेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू हैड द मोस्ट म्यूजिक हैवी एक्टर इमरान हाशमी। लेकिन प्रीतम दान ने उस फिल्म के लिए जो म्यूजिक बनाया वो फिल्म से बड़ा निकला, कास्ट से बड़ा निकला, कॉन्ट्रोवर्सी से बड़ा निकला। और इस हफ्ते नंबर 6 पे है मैं और तू फ्रॉम धुरंधर 2, एक और गाना जो शायद अपनी फिल्म से बड़ा बन सकता है, लेकिन ये वक्त ही बता पाएगा। लेकिन गैंगस्टर के एक गाने ने वक्त का इंतजार नहीं किया, वो ऑलरेडी क्लासिक बन चुका था जिस रात वो रिलीज हुआ। 2 बजे की नींद, किसी का नाम, भीगी आंखें, ये सिर्फ गाना नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ऑन अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज जेम्स विद भीगी भीगी।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
4: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
5: मिर्ची इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Number 5.

तेज हफ्ते मैन रियली गहरा हुआ अरिजीत सिंह का गाना जो हर बार नया लगता है। लेकिन कुछ दिन पहले आई थिंक रात के 3 बज रहे थे और मैं बस सोने ही जा रहा था एंड फिर एक वर्जन सुन लिया।

0: तेरा हुआ। इस बंदे का कोई नाम नहीं है, ये अपना चेहरा तक नहीं दिखाता। बस YouTube पे एक चैनल है कॉल्ड मेलोडिक बैश, बस 3000 लोग जानते हैं इसे। That's it. That's his subscriber count. लेकिन वो acoustic गिटार जो इतना aggressive है, तार पे तार, जैसे कोई उस दर्द को अंदर रखने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। The song isn't soft, it's not gentle, लेकिन इतना खूबसूरत है, इसलिए तो मैं इस गाने पे आके रुक गया। और वो आवाज, क्योंकि अरिजीत ने जिस तरह गाया है वहां पर भी दर्द है, लेकिन यहाँ अंदर से बिल्कुल एक अलग दर्द निकलता है। और यही तो म्यूजिक की सबसे बड़ी सच्चाई है, एक ही गाना हजार लोगों के हाथ से गुजर के हजार अलग कहानियां बन जाती हैं। मेलोडिक बैश की कहानी मुझे 3 बजे जागने पर मजबूर कर गई, लेकिन अभी के लिए इस फीलिंग के लिए एक और ऐसी आवाज जिससे मैं दूर नहीं हो पाता, नंबर 4 पे कोई और हो ही नहीं सकता, विशाल मिश्रा और उनकी दीवानियत।
1: नंबर 4।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अजय देवगन, फर्ज करते हैं आप माउंटेनियरिंग के किसी एक एक्सपेडिशन पे गए हैं। देयर आर थ्री पीपल विद यू, देयर इज केआरके, देयर इज करण जौहर एंड देयर इज काजोल। दो इंसानों को आप बचा सकते हैं, एक को आप नहीं बचा पाएंगे।
4: क्यों मुझे दो क्यों बचाने पड़ेंगे? क्यों मैं सिर्फ अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा सकता?
3: Because that's the game. हमको दो लोगों को तो बचाने ही पड़े।
4: मुझे बचाने नहीं है। I break the rule. मैं तो वही करता हूँ जो मैं करता हूँ।
3: ऐसा ही हूँ मैं।
4: हाँ, बस ऐसा ही हूँ मैं।
3: अजय देवगन being ultra savage. आप सुन रहे हैं मिर्ची It's hot.
1: Bollywood bol dal. Bollywood Bollywood Bollywood bol dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut cut.
6: Who that?
5: Zahir.
6: Zahir. Zahir who?
5: Zahir सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
6: Cut cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
8: Number 2.

0: आरी आरी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा. अगेन नंबर टू दिस वीक. माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम और ये है इस काउंटडाउन का आखिरी सेगमेंट. तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ. बॉलीवुड में आज जो दिख रहा है वो सच नहीं है. वो रिव्यू खरीदा गया है, वो ट्रेंड प्लांट किया गया है, वो पब्लिक इज लविंग दिस फिल्म एक बिल है भाई जो सब भर रहे हैं. और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद करण जौहर कह रहे हैं.
1: Bollywood should stop doing PR. It would be much better and they should let their achievements speak for itself. Because unfortunately, all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. So I think we are on overdrive mode.

0: where it comes to PR. But now everything is available at a price, and that is something that could be deeply upsetting, because then you really can't gauge what's connecting and what's not. Because like now you're looking at everything and you're like, are people really liking it, or have you been paid to like it? Like, I don't know. I can't tell half the time. Like, you know, many a time it's confusing me, and because even I'm sometimes paying for it, so I don't know.
1: I don't know. ये वही बंदा है जिन्होंने इस मशीन को बनाया, और अब वो खुद नहीं जानते कि ये मशीन आखिर क्या कर रही है। जरा सोचिए, that is the truth. And then, और फिर एक और कहानी आती है। दिसंबर 5, 2025, धुरंधर। मार्च 19, 2026, धुरंधर 2। रणवीर सिंह, कोई इंटरव्यू नहीं। आदित्य धर, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। Was there paid PR? Absolutely zero. Organic PR? Again, absolutely zero. सिर्फ एक फिल्म, उसके दो हिस्से और उसकी आवाज। पांच महीने बाद धुरंधर इज बॉलीवुड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म एवर, और इस काउंटडाउन पे जो गाना नंबर वन है 12 हफ्तों के लिए, नो पेड पीआर, इट्स अ जेन्युइन बैंगर। करण ने कहा था, लेट योर वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, एंड रणवीर एंड आदित्य धर डिड जस्ट दैट। They let their work scream for themselves. This is Shararat, Dhurandhar, 12th week on number one.
2: Number one.

0: सो ये था मिर्ची डॉट 20 का लेटेस्ट एपिसोड, 20 गाने एक जर्नी और आप जो इस सफर को मायने देते हैं। म्यूजिक वही जीतता है जो सच में लिखा गया हो, बाकी सब वक्त तय करता है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
2: मेरे घर का फ्रिज बिगड़ गया है, क्या करूं?
3: फ्रिज बिगड़ गया है, बड़ा ही गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि परवरिश में ध्यान रखना था, अब क्या?
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: घड़ी में राइट एंगल का इशारा हो चुका है, यानी कि रात के 9 बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स राइट हियर ऑन मिर्ची।

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफ कोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो भाई संतोष से बात कर रहा हूँ मेरी
2: जी बोल रहा हूँ
1: हाँ जी भाई संतोष यहाँ थाने से बोल रहा हूँ आपको थाना आना पड़ेगा
2: क्यों
1: मैं आपको यही बता रहा हूँ आप वहाँ पे गए थे जंतर मंतर
2: जी
1: आपने धरने पे बैठे थे आप
2: जी बैठे थे
1: वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था सबके लाठियाँ पड़ी थी आपके रह गई हैं आपकी तीन लाठियाँ लगनी है यहाँ के लगवा लो जल्दी से
2: हाँ तो जस्टिस के लिए गए थे सर वहाँ पे
1: जस्टिस कैसा जस्टिस भाई कैसा मैं ये नहीं जानता जस्टिस आप वहाँ पे गए थे आप इस बात को मान रहे हो
2: जी गए थे जी
1: लाठी चार्ज हुआ वहाँ पे
2: जी
1: आपके पड़ी लाठी कोई
2: मेरे तो नहीं पड़ी
1: वही तो मैं कह रहा हूँ आपके तीन लाठियाँ रख गई हैं यार तीन लाठियाँ आपके लगनी है और आपको आने में परेशानी है तो आपके एरिया इंचार्ज से बोल देंगे वो वहाँ चले जाओ वो दो तीन लाठियाँ मार देगा आपके यार वैसे मीडिया ने हमें बदनाम कर रखा है वो कह रहे हैं सबकी लाठी पड़ी आपके पड़ी नहीं आप आगे बढ़वाओ यार जल्दी से
2: सर आप नाराज क्यों
1: नहीं नाराज क्योंकि बात है बताइए हाँ बताओ
2: सर अपने दोस्तों के कहने पे गया था बहुत दूर था लाठी
1: तो वही तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत दूर थे ना वहाँ से भाई बहुत दूर था भाई इतने मैं यही तो कह रहा हूँ बहुत दूर खड़े थे आपके कोई लाठी लगी है नहीं लगी है बताओ
2: दूर था तो सर मेरे कैसे लगती
1: वही तो मैं कह रहा हूँ यार आप बच गए तीन लाठियां रजिस्टर पे चलाइए अब आपके नहीं लगाएंगे तो बात कैसे बनेगी
2: सर नाराज क्यों है मैं
1: नहीं
2: तो
1: नाराजगी की तो बात है
2: मैं दोस्तों के कहने पे गया
1: तो अब मैं आपसे मैं भी आपका दोस्त हुआ आपको आ जाओ तीन लाठियां मारेंगे आपके छोड़ देंगे आपको यार क्या परेशानी है वो भी हमसे परेशानी ये हो गई कि रजिस्टर में तीन लाठी चढ़ा दी इसलिए मारनी है भाई जल्दी आ जाओ भाई यार
2: मैं शाम में आ जाऊंगा
1: यार नहीं यार मेरे को तमीज सिखा रहे हैं आप हैं मेरे को तमीज सिखा रहा है मैं यार तमीज से बात कर रहा हूँ मैं तमीज से बात कर रहा हूँ भाई इस बात समझ में नहीं आ रही लाठी चार्ज हुआ था उसमें तीन लाठियां तुम्हारे नाम की है
2: वो
1: बहुत दूर था नाराज वाली बात है यार ओके चलो लाठी मत करो लाठी नहीं मारेंगे मुर्गा बन जाओ
3: संतोष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ भैया मुझे किसी ने बताया था तुम धरने पे गए थे और तुम्हारी कोई लाठी नहीं लगी थी वाला के वहाँ लाठी चार्ज हुआ था और अब तो अब मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए आप
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: मेरे बेटे आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे
6: अरे करण अर्जुन आमिर शाहरुख ऋतिक अक्षय इमरान सबके गाने आएंगे दीदी
7: आएंगे दीदी आएंगे दीदी
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की, एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था, ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है, तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी एंड दैट वॉज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया, कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज।
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तुझे पता है चीन में ब्रेकअप होने के बाद लोग अपनी एक्स की एआई रेप्लिका बना रहे हैं।
4: भाई इनका भी सही है, पहले फीलिंग शेयर करते थे, अब डेटा शेयर करेंगे। हर ऊपर से एक और चीज है, रिलेशनशिप एंड होने के बाद अब ये एंड टू एंड एनक्रिप्शन पे जा रहे हैं।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हसन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आ रही थी। तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए, जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए। लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, कम बैक राइट हियर।
1: ओ मेरी सोनी, मेरी तमन्ना झूठ नहीं
0: किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, कम बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कट।
2: अबे कौन है?
1: उत्तपा।
2: उत्तपा कौन?
1: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
2: खट खट हू दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको? ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वॉन्टेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस सब।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही हैं, तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: रात के बज चुके हैं 10, मिर्ची पे शो का नाम पुरानी जीन्स।

इस फिल्म से एज म्यूजिक कंपोजर अपनी शुरुआत की थी इलैयाराजा जी ने, और इसी फिल्म से अपना डेब्यू इलैयाराजा के असिस्टेंट बनकर के पता है किसने किया था? डी ए आर रहमान। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, यानी श्रीदेवी जी और कमल हासन की फिल्म। इसी फिल्म से ये दोनों द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स म्यूजिक कंपोजर्स हमें मिले थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इस फिल्म की बातें और गाने बहुत सारे आज लेकर के आई हूँ, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी
4: मैडम, प्लीज किसी मैकेनिक को बुला देंगे, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
3: ठीक है सर,
4: 5 सेकंड जल्दी।
5: इतने में तो एक्सीडेंट हो जाएगा यार, जल्दी बुलाओ।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो,
4: प्लीज जल्दी बता दो।
3: हेलो
4: बात की, होल्ड नहीं कर सकता। हेलो
6: हाँ जी सर,
4: सर प्लीज मेरे को बता दो, मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ये किस तरह रुकेगी?
6: सर पे हैंड ब्रेक खींच दो।
4: एक सेकंड
6: सर हैंड ब्रेक खींच दो। सर
4: एक सेकंड रुकिए
6: सर, साइड में लेफ्ट साइड में।
4: ओ यार मेरा वो छोले भटूरे वाला भी निकल गया, मैं रोज का दादा, मैं कैसे रुकूं? एक सेकंड
6: सर, इग्निशन ऑफ कर दो।
4: इग्निशन एक सेकंड रुकिए, ये चाबी से बंद करने को बोल रहे हैं।
6: हाँ जी
4: एक सेकंड सर, कोई रास्ता मालूम है जिस रास्ते पे ले सकता हूँ इसको?
6: मेरे को क्या पता कहाँ पे है।
4: मैं इस वक्त पालम की तरफ से निकल रहा हूँ, पालम एयरपोर्ट की तरफ से।
6: सर इसका हैंड ब्रेक खींच दो।
4: एक सेकंड हैंड ब्रेक नहीं खींचना, एक सेकंड कुछ और, ये हैंड ब्रेक ऊपर करते हैं।
6: हाँ जी
4: ऊपर करने से नहीं हो रहा है, और कुछ बता सकते हैं? ब्रेक बिल्कुल गए,
6: बिल्कुल गए। एक्सेलरेशन छोड़ दो सर।
4: क्या करूँ?
6: एक्सेलरेशन छोड़ दो।
4: एक सेकंड रुकिए।
6: क्या हो गया?
4: आए गाड़ी ठुक गई
6: है,
4: गाड़ी ठुक गई।
5: मैडम क्या नाम है आपका?
3: दिव्या।
5: दिव्या मैं रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, आपका मुर्गा बना दिया हमने।
3: I was so tense, I don't know what
0: happened. मिर्ची मुर्गा नावेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's hot.
7: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप उस श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग ओवर राइट नेक्स्ट, सुरमई अखियों। ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पर इतना इनोसेंस, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से इन्जॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
2: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
1: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
3: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
4: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
5: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हासन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स तो मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हासन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हासन हू सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हासन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हासन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हासन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और ये
4: नाना पाटे का कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: 89.6, 89.6, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर से वो टाइम आ गया जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगला गाना इज़ अ कल्ट सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या ज़िंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये। यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी ओरिजिनली, तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था। यही गाना था पुंगात्रु पुथी नाथू, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले। कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मैंने

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं रोल पहले करने वाली थी डिंपल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोप इन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: गुड इवनिंग मिस्टर मनोज।
3: गुड इवनिंग
4: मिस्टर मनोज, मैं तिवारी बोल रहा हूँ ऑल इंडिया चिल्ड्रन सोसाइटी से।
3: ओके
4: सर, आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हम हर हफ्ते एक फंक्शन रखते हैं जिसमें ज्यादातर पेरेंट्स और ज्यादातर बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप इत्तेफाक से यहाँ पे आ नहीं पाए, तो हम उन लोगों को भी फोन कर रहे हैं और उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं ताकि बच्चे की तरह उनकी भी नॉलेज अच्छी रहे। राइट फाइन। तो सर आपसे दो चार सवाल करेंगे प्लीज, आपके पास दो मिनट होंगे और यहाँ पे कई लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, हमने आपको कनेक्ट कर रखा है, तो कुछ सवाल आपके होंगे, जवाब देने पड़ेंगे। राइट सर, मिस्टर मनोज आपके सवाल ये रहे, टू टू जा
3: फोर।
4: वेट सर, वेट,
3: इवेंट ये फंक्शन कहाँ हो रहा है?
4: सर यहीं पे लोधी रोड पे हो रहा है, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी जाइएगा। दूसरा आपका सवाल सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो
3: डर जाएगी।
4: गुड सर, वेरी गुड सर।
3: ये कोई इतने मुश्किल सवाल जवाब तो है नहीं
4: सर, आप चाहते हैं कि मुश्किल पूछे जाए आपसे, ये तो और आप हमारे लिए आसानी कर रहे हैं, हम तो जान के आसान।
3: मेरी नॉलेज चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं
4: सर? वही नॉलेज ही चेक कर रहे हैं, ताकि बच्चों की तो नॉलेज हम चेक करते ही रहते हैं। पेरेंट्स को अकल कितनी है, और प्लीज बुरा मत मानिएगा, अगर आप चाहते हैं तो आपसे हम ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं बड़ों वाले।
3: पूछो यार।
4: अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90
3: पूरे 100।
4: ग्रेट मिस्टर मनोज, ग्रेट। सर आपका अगला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है सर, पोषम मावई पोषम पाल लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की चोरी चुराई, अब तो कहाँ आना पड़ेगा?
3: जेल में जाना पड़ेगा।
4: ग्रेट सर, ग्रेट। रेडियो मिर्ची पर जो भी मुझसे बात करता है उसका बन जाता है क्या?
3: समझा नहीं मैं
4: बताता हूँ सर, इसका जवाब है मुर्गा। मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका प्यारा सा जो बेटा है रोहन, उसने आपका मुर्गा बनवाया है, और ये क्विज उसी का था। जो भी नवेद से बात करता है वो खुद बोलता है क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई, और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी है, उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये ना ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें, इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इन केस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना, तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो। सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ, इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया। एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: खटखट
2: कौन है?
1: स्टेन।
2: स्टेन कौन?
1: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
3: खटखट हो दैट
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी गड्डी में बैठो और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज हाईवे पे जाने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे। आज का मेरा हाईवे हेट मैं उन दीवानों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना मानते हैं अपने प्यार के लिए और कहते हैं
1: मुझसे नहीं
0: इस अंबर के नीचे। अगर आप ऐसे दीवाने हैं तो ये गाना आज आपको सेलिब्रेट करते हुए। रफी साहब की आवाज, मैं हूँ श्रेया, जाने का टाइम हो गया। विल सी यू टुमारो। इन केस मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। Good night.
1: Devana.

0: वाओ।
1: इस अपबीट ट्रैक को गाया है हार्डी संधू और किरण बाजवा ने। म्यूजिक कंपोज किया है तनिष्क बागची, रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। लिरिक्स लिखे हैं रॉनी अजनाली और गिल मचराई ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है का ये सुपर हिट गाना सुनते रहिए ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

हे शिवानी, तू लगती है नानी, बनेगी कब रानी। हे हे शिवानी।